दोस्तों, जिंदगी कभी भी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कभी धूप होती है तो कभी छांव, कभी सफलता कदम चूमती है तो कभी असफलता हमें ठोकर देकर आगे बढ़ना सिखाती है। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है, क्योंकि हर हार अपने साथ एक सीख लेकर जाती है। जो गिरकर संभलना सीखते हैं ना, वही एक दिन ऊंचाइयों को छूते हैं।

दोस्तों जानते हैं, किसी के आने से जिंदगी संवर सकती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास से जिंदगी बदल भी सकती है। रिश्ते अनमोल है, मगर सबसे मजबूत रिश्ता अपने हौसलों से होता है। तो अगर आज कोई दूर है ना, तो उदास मत होइए। हो सकता है जिंदगी आपको ये सिखा रही हो कि सबसे पहले खुद का साथ निभाना सीखिए। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है ना, तब दुनिया भी उसका साथ देने लगती है।

दोस्तों हवा की तरह बनिए जो बंद दरवाजे के सामने रुकती नहीं है बल्कि अपना नया रास्ता ढूंढ लेती है क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हालात नहीं हौसलों के सहारे चलते हैं। तो जिंदगी में हमेशा हवा की तरह चलते रहिए, ताजगी बांटिए, उम्मीद जगाइए और हर नए दिन के साथ नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़िए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:10 पर। श्री रामचरितमानस का समय रहेगा 6:45। गोल्ड सुप्रभात आप सुनेंगे 7:10 पर। म्यूजिकल दिल्ली का समय रहेगा 8:45 और 9:10 का। दिल का मेलबॉक्स रिक्वेस्ट बेस्ड ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 10:30 पर। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद का समय रहेगा 11:10। ग्यारह बजकर 25 मिनट पर तस्वीर कार्यक्रम केंद्रित होगा अमृतसर पर। एक कदम बुजुर्गों की ओर स्पेशल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन सुनिएगा 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री जरीना बहाव पर 1:10 पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात आप सुनेंगे 2:30 पर। मन भवन रिक्वेस्ट बेस्ड शो पेश किया जाएगा 3:10 पर। फिल्म सॉन्ग्स आप सुनेंगे 4:10 पर। पानी पर लिखी कहानी पहचान तो थी पहचाना नहीं सुनिएगा 5:10 पर। आलेख रश्मि मार्केट मंत्र सुनिएगा 6:30 पर। मधुरिमा कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 8:10 पर। हर सिंगार ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। गीत मेरे मन बीत इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात 11:40 पर। यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास

परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा गाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

सही कहा है कि कण कण में है भगवान, इसलिए कहते हैं कि कुछ पल के लिए दुनिया की चिंताओं को किनारे रखें और प्रभु के चरणों में अपने भाव अर्पित करें, क्योंकि भक्ति और आस्था दिल की सबसे पवित्र भाव है। इसलिए मन में ये विश्वास धारण करें कि हम अपने कर्म में सच्चाई, व्यवहार में प्रेम और मन में हमेशा ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखेंगे।

6:24 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और साथियों, जहां राम का नाम होता है ऐसा कहते हैं कि वहां उम्मीदों का धाम होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता, सफलता के साथ संस्कार और जीवन के हर रिश्ते में प्रेम कितना जरूरी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

6:32 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, जहां हर शब्द में है श्रद्धा की खुशबू, हर सुर में है प्रभु का स्मरण और हर पल में है मन को शांति देने वाला एहसास। और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों, कहते हैं कि हर आत्मा को एक किनारा चाहिए, हर भक्त को एक सहारा चाहिए, जीवन कट सके हरि नाम के संग, इसलिए कृष्ण प्रेम सा प्यारा चाहिए। 6:38 और 2 सेकंड, ये है श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम।

साथियों 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ आनंद लेते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ का।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे बालकांड से लिया गया था। और इसी के साथ कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है और समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब हम सुनेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी समाचार बुलेटिन। और उसके बाद 7:10 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: भागितां सुदृढां कर्तुम् अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुम् तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते। अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातकस्तरीय चिकित्सा दंत चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलिगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां 3-1 दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारत दलं 4-2 पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अंतिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 0 होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाखाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर की ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, the Prime Minister will also visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. These projects are aimed at strengthening connectivity, improve passenger convenience, and accelerate economic development in the region. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 6 redeveloped Amrit railway stations in Kerala through video conferencing today, along with 75 other Amrit stations across the country. The 6 stations in Kerala are expected to significantly enhance railway infrastructure and passenger amenities across the state. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal beginning today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on broader security, governance, law and order and development. Tomorrow, Mr. Shah will visit the Dugamuch border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. The National Testing Agency has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website NEET

जनाब आशा ताई और रवि शंकर की आवाज में ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये है 1955 में आई फिल्म वचन से और फिलहाल 7:24 और 15 सेकंड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का जो दिन है ये इंटरनेशनल जस्टिस डे वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के तौर पर और दक्षिणायन का दिन होने के तौर पर अपनी एक खास पहचान रखता है जिनके बारे में हम बात करेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी में 8:45 और 9:10 पर। और आज के मौसम का जिक्र आपके साथ करूं तो फिर आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति रहेगी करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास और ह्यूमिडिटी आज भी हमें परेशान करेगी। और 10:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद, 11:25 पर तस्वीर में आज हम आपको अमृतसर लेकर चलेंगे पंजाब में, 12:10 पर आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर, दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल जिसमें आज आप अभिनेत्री जरीना वहाब के बारे में बात सुनेंगे, और 2:30 से 3 दोपहर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात जिसमें आज का विषय रहेगा खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक प्रबंधन और इसमें शामिल होंगे स्टूडियो से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर वाई एस शिवे जो पूसा संस्थान नई दिल्ली से हैं। दोपहर 3:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मनभावन, 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी जिसमें आज की कहानी रहेगी पहचान तो थी पहचाना नहीं, 6:30 का समय रहेगा मार्केट मंत्रा का, 8:10 पर मधुरिमा, 10:30 हर सिंगार और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत और एक और खूबसूरत गाना आपके लिए यहाँ ओनली ऑन 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड। आवाज गीता दत्त की है और गाना बहुत प्यारा बहुत मीठा जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं।

तो दोस्त फिलहाल इसी गाने के साथ मुझे लेनी है आपसे इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे और उसके बाद समाचारों के उस पार आपसे फिर मुलाकात होगी म्यूजिक दिल्ली में 8:45 पर। टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय, टेक केयर।

0: कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मनुष्य को आलस्य का त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी कहती हैं कि इंसान को अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को याद करके ठंडी सांसें नहीं भरनी चाहिए। जब हृदय में दृढ़ संकल्प और कुछ करने की आग होगी, तभी आंखों में आने वाले मनुष्य के आंसू भी सार्थक हो जाएंगे। कवित्री मनुष्य के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहती हैं कि यदि इस सफलता रूपी साधना के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े, तो वो तुम्हारी हार स्वाभिमान और विजय की पताका बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख तो हो जाता है, लेकिन वो राख उस अमर दीपक की निशानी बन जाती है। महादेवी आगे कहती हैं कि हे कर्तव्य पथ के साधक, तुम्हें संघर्षों और कांटों रूपी अंगारों की शैया पर भी अपने कोमल मन से प्रेम और शांति के फूल बिछाने हैं, अर्थात तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और कोमलता बनाए रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो श्रोताओं, सफलता के सौंदर्य रस से सनी हुई इन स्वर्णिम पंक्तियों को हम भी अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ते रहें सफलता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। श्रोताओं, आज के दिन की इस खूबसूरत और सुहावनी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी बीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 17th of July.
0: जी, तो क्यों ना प्रमोद, अब शुरुआत करें कार्यक्रम आज सवेरे अब तक के मुख्य

0: समाचारों से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा।
1: That's right, Mukesh. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 6 redeveloped Amrit railway stations in Kerala through video conferencing today, along with 75 other Amrit stations across the country. The 6 stations in Kerala are expected to significantly enhance railway infrastructure and passenger amenities across the state. The upgraded stations feature modernized platforms, improved station buildings, contemporary waiting halls, and enhanced passenger facilities aimed at providing a more comfortable travel experience. Air-conditioned waiting halls have been introduced at the Angamali and Talasheri railway stations. The redevelopment has also been planned with a focus on improving connectivity to Kerala's major tourist destinations, cultural centers, and pilgrimage sites.
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है।
1: The National Testing Agency NTA has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counseling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centers in 551 cities in India and 14 cities abroad.
0: गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS के हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश में थे।
1: In United States, Trump administration has imposed new visa restrictions to bar far-left terrorists from entering the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that foreigners who finance, incite or aid and abet far-left terrorists are enemies of America's civilization and they are not welcome in the United States. The new visa restriction policy aims to undermine the political foundations of free and self-governing societies, utilizing bombings, assassinations and other forms of terrorism to silence speech, limit political opposition, change policy outcomes and sabotage political processes.
0: और क्यों ना अब अपने श्रोताओं को खेलों की दुनिया की जानकारी दें।
1: बिल्कुल।
0: तो इंग्लैंड ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इस श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
1: एंड इन फुटबॉल दी India under 17 women's team have been drawn with Malaysia, Syria and Iraq in Group E of the AFC under 17 Women's Asian Cup China 2027 qualifiers, following the draw conducted at the AFC house in Kuala Lumpur, Malaysia yesterday. India will aim to qualify for back-to-back AFC under 17 Women's Asian Cups for the first time, following the Young Tigresses' historic first-ever knockout stage appearance in the previous edition. Malaysia will host Group E of the qualifiers from 5th to 11th of October this year. India will begin their campaign against Iraq, followed by a match against Syria and then Malaysia. The group winners will qualify for the AFC Under-17 Women's Asia Cup China 2027, which will be held in Suzhou from 31st of March to 17th of April 2027.
0: और अब राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात, तो हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और आर्टिफिशियल एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भाग लेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के समाचारों की।
1: जी,
0: तो दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इसके लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि निवेश की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति दिल्ली के 11 विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, ITI और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के विद्यार्थी इन संस्थानों में इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि सफल छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य इंक्यूबेशन नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस नीति के अंतर्गत सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का भी आयोजन करेगी। और दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के 7वें चरण के अंतर्गत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके अपने घरों के नज़दीक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा दिल्ली में लोक निर्माण विभाग नो योर रोड परियोजना इस पहल के अंतर्गत राजधानी की सभी सड़कों में लगभग 2500 QR कोड लगाए जाएंगे। इन QR कोड को स्कैन करके नागरिक सड़क के निर्माण मरम्मत काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही नागरिक QR कोड के जरिए सड़क से जुड़ी शिकायतों पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया JMI ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल का विस्तार और नवीनीकरण का कार्य भी किया है। नवीनीकृत और विस्तारित रीडिंग हॉल में शोधार्थियों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 250 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 150 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल शामिल है।
1: And in Chennai Metro News, the Directorate of Medical Education has found merit in complaints that some medical colleges collected tuition fees for the compulsory internship year of the MBBS course. Health Minister K.G. Arun Raj ordered the inquiry after reviewing reports submitted by teams comprising senior doctors and deans from Kanchipuram, Chengalpattu and Madurai. The complaints relate to colleges charging fees for the entire 5.5-year MBBS duration instead of the 4.5-year academic program in the final year. Staying on with Chennai Metro News, the Enforcement Directorate has detected illegal forex transactions to the tune of 50 crore rupees by 2 city-based hair export firms. ED said it seized various incriminating documents and digital records indicating receipt of export proceeds in foreign currency, utilization of Dubai-based overseas entities for business transactions with foreign customers, communications related to hawala transactions and records pertaining to collections in foreign currency equivalent to over 50 crore rupees.
0: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सरकारी खरीद नीति में व्यापक सुधार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समन्वय, गुणवत्ता, नवाचार और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। समिति मौजूदा निविदा नियमों की समीक्षा करेगी और सुधारों की सिफारिश करेगी, जिसके बाद सरकार संशोधित दिशा निर्देश भी जारी करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक नई एग्रीगेटर नीति लागू की है। इससे यात्री परिवहन अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। इस नीति के अंतर्गत एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। 24 घंटे शिकायत समाधान, GPS ट्रैकिंग, ड्राइवर सत्यापन और बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा, जबकि ड्राइवरों को कुल किराए का कम से कम 80% हिस्सा मिलेगा। ये नीति सर्ज प्राइसिंग पर सीमा भी लगाती है। ऐप्स पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का

0: समर्थन अनिवार्य करती है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है, कार पूलिंग के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करती है और मराठी भाषा का ज्ञान रखने वाले स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देती है।
1: And now moving on to Bengaluru, Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate 4 redeveloped railway stations in Karnataka under the Amrit Bharat Station scheme tomorrow. The stations are Alnavar, Badami, Bantawal and Koppal, which have been redeveloped at a total cost of nearly 80 crore rupees. Staying on with Bengaluru, Deputy Chief Minister and Revenue Minister Dr. G. Parameshwara has said that the Karnataka government is taking all necessary measures to tackle the worsening drought situation and prevent drinking water shortages across the state. He said the government has released 5 crore rupees to each district for drinking water supply and is closely monitoring the situation. Dr. Parameshwara said he has written to the Prime Minister, Union Home Minister and Union Agriculture Minister seeking relaxation of drought declaration norms and the immediate release of NDRF funds for drought relief.
0: और अगर बात करें पश्चिम बंगाल से जुड़े समाचारों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 1570 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री अनुकूल परिवहन केंद्रों में परिवर्तित किया गया है, साथ ही इनकी क्षेत्रीय पहचान को भी बरकरार रखा गया है। पूर्वी रेलवे के अंतर्गत इस परियोजना के लिए 64 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 6 का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। शुक्रवार को पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत आने वाले शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जो इस जोन के तहत उद्घाटन किया जाने वाला 7वां पुनर्विकसित ABSS स्टेशन होगा। शिवनारायणपुर स्टेशन का पुनर्विकास योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 17,94,00,000 रुपये की लागत से पूरा किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR जोन के अंतर्गत आने वाले 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों में अलीपुरद्वार संभाग के अंतर्गत जलपाईगुड़ी रोड शामिल है।
1: मूविंग ऑन टू हैदराबाद, IT and Industries Minister Duddila Sridhar Babu and TPCC President Mahesh Kumar Gowd announced that Telangana is formulating strategic plans to maximize benefits from the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom. Following the agreement's implementation, a high-level UK delegation led by South Asia Deputy Trade Commissioner Chandru K. Iyer met with leaders at the Secretariat yesterday. Both leaders expressed optimism that the deal would significantly boost bilateral trade, opening up potential opportunities worth 32.56 lakh crore rupees. Highlighting Telangana's investor-friendly environment, they invited UK industrialists to leverage the state's world-class infrastructure in key sectors, including life sciences, aviation, defence, IT, semiconductors, chip design and electronics. And moving on to Goa. In Goa, Chief Minister Dr. Pramod Sawant participated in the Jagannath Yatra and called upon people from Odisha living in the state to embrace Goa's culture and contribute to its development. More in this report.
2: Chief Minister Dr. Pramod Sawant performed the ceremonial pulling of the chariot during the annual Jagannath Rath Yatra in Panji. The procession began from Miramar Circle and culminated at the Panji ferry boat jetty. Addressing the gathering, Dr. Sawant said Goa is a state that upholds communal harmony and respects all religions. He appealed to people from Odisha residing in Goa to adopt Goan culture while continuing to contribute to the state's progress. The Chief Minister noted that nearly 40,000 people from Odisha are working in Goa and expressed hope that the blessings of Lord Jagannath would bring continued peace and prosperity to the state. The Jagannath Rath Yatra has been organized annually in Goa by Odisha community since 2009. For Aaj Savere, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: In Keralam, the observance of Ramayana month begins today. More from our correspondent.
3: In Kerala, the Karkadaka month of Malayalam era is observed as Ramayana month, a time when devotees turn to the epic Ramayana for spiritual strength and peace of mind. Today marks the first day of Karkadakam. From the very first day of the Karkadakam month, the recitation of Ramayana becomes a daily ritual in many households and temples across Kerala. Special recitation sessions and devotional programs are also organized in temples during this period. Smithy M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और प्रमोद के साथ। कार्यक्रम में अब बात महानगरों के मौसम की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगर बात करें मुंबई में तो आज वहां भी सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर बात करें कोलकाता की तो आज वहां भी बादल छाए रहने और बारिश का अनुमान है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं प्रमोद से।
1: जी मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। The minimum temperature was 28 degrees Celsius and the maximum will be 40 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will be between minimum of 25 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
0: श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के उस पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 17 जुलाई 2026 है। 17 जुलाई का दिन कहने को तो एक सामान्य सा ही दिन है, लेकिन इतिहास के झरोके में झांके तो इस तारीख के नाम बहुत सी अच्छी और आंखों को नम कर देने वाली घटनाएं दर्ज हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात बरस 1919 की। फिनलैंड में आज ही की तारीख को इस साल में संविधान को अंगीकार किया गया था और 1924 में ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव में मतदान भी अनिवार्य आज ही की तारीख को हुआ था। अगर बात करें 1929 की तो सोवियत संघ ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध को समाप्त कर लिया था और 1994 में धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति ग्रह से टकराया। इसके बाद 1995 में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किए गए थे।
1: मुकेश, टुडे वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इमोजी डे, अ डे टू ट्रिब्यूट टू द टाइनी डिजिटल सिंबल्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट।
0: बिल्कुल,
1: आई एम श्योर आप भी यूज करते होंगे इमोजीज।
0: बिल्कुल, इमोजीज का तो बिल्कुल अपने डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने मन की भावना,
1: बट मुझे सिर्फ कुछ इमोजीज के बारे में पता है, बाकी बहुत सारे हैं। आई डोंट नो अबाउट,
0: मुझे भी बस कुछ ही के जिनमें कि एक मतलब भारतीय संस्कृति का परिचायक जिसे हम कह सकते हैं कि नमस्कार करते हुए अभिवादन,
1: नमस्कार भी दो तीन है उसमें,
0: हाथ जोड़ना।
1: एग्जैक्टली,
0: बिल्कुल।
1: द डेट जुलाई 17th वाज चोजन बिकॉज इट अपीयर्स ऑन द कैलेंडर इमोजी ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स। ओरिजिनली लिंक्ड टू एप्पल्स आई launched in 2002, it has since become the unofficial birthday of the emoji and a global moment to recognize their cultural impact.
0: Ji.
1: And listeners, today the world comes together to celebrate World Day for International Justice, a powerful reminder of our shared commitment to justice, accountability and human dignity. Marking the anniversary of the Rome Statute that founded the International Criminal Court, this day highlights how justice underpins peace and human rights globally.
0: Gee.
1: Across the country, awareness campaigns and student dialogues fuel a shared vision. Justice is not just a promise, but a living reality. ये भी बहुत सही है मुकेश।
0: बिल्कुल सही
1: कि अगर किसी के साथ injustice हो रहा हो और अगर हम उस चीज को अगर नजरअंदाज कर दें, that means
0: तो
1: हम गलत कर रहे हैं।
0: न्याय के समान ही अगर उसको देखा जाए तो देखा जाएगा।
1: जी।
0: तो कार्यक्रम में अब बात क्यों ना की जाए उन व्यक्तित्वों की जो आज के दिन इस दुनिया में आए, आज के दिन या जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा या आज ही जिनका जन्मदिन है। तो इस कड़ी में बात करते हैं सबसे पहले कानन देवी की। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी की आज पुण्यतिथि है। कानन देवी एक प्रशिक्षित गायिका तो नहीं थी, लेकिन सिनेमा जगत में जिस दौर में वो सक्रिय थी, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाया। वो पहली बांग्ला कलाकार थी जिन्होंने भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: That's right.
0: कानन देवी ने 10 वर्ष की उम्र में फिल्म जयदेव में काम किया। 1934 में प्रदर्शित फिल्म माँ बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। उनकी

अन्य मुख्य फिल्में हैं मुक्ति, जवाब, हॉस्पिटल, वन फूल, फैसला, आशा और राजलक्ष्मी। तो आइए सुनते हैं 1943 में आई उनकी हिट फिल्म हॉस्पिटल से कानन देवी पर फिल्माया गया ये।

0: मुकेश, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था दूरदर्शन में, कानन देवी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो बहुत बड़ा रिग्रेट है लाइफ में वो ये था कि शी रिफ्यूज पी सी बरुआ एज देवदास. देवदास में उनको एक रोल दिया गया था
1: जी,
0: बट शी रिफ्यूज्ड इट. सो दैट वाज वन ऑफ हर बिगेस्ट रिग्रेट्स.
1: बिल्कुल.
0: वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जवाब, वो सुन लेते हैं उनकी आवाज.
1: बिल्कुल, क्यों नहीं.

0: श्रोताओं, भारतीय संगीत जगत के मनीषी लालमणि मिश्र की भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। लाल मिश्र ने विचित्र वीणा की वादन तकनीक विकसित करने के साथ भारतीय संगीत वाद्यों के इतिहास तथा विकास क्रम पर अनुसंधान किया। वैदिक संगीत पर शोध करते हुए उन्होंने सामिक स्वर व्यवस्था का रहस्य सुलझाया। सामवेद के इन प्राप्त स्वरों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने राग सामेश्वरी का भी निर्माण किया। भरत मुनि द्वारा विधान की गई 22 श्रुतियों को मानव इतिहास में पहली बार डॉक्टर मिश्र द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र श्रुति वीणा पर एक साथ सुनना संभव हुआ। संगीत की हर विधा में पारंगत लालमणि मिश्र ने अपनी साधना और शोध के बल पर एक अलग शैली विकसित की, जिसे मिश्रवाणी के नाम से स्वीकार किया गया था।
1: Today is also the death anniversary of Mysore Puttalingapakka Shankar, popularly known as M.P. Shankar. He was an Indian actor and filmmaker in Kannada cinema. He acted in films like Satya Harishchandra as Veera Bahu, Nagar Havu as Pailwan Basanna, and Bhutiyana Maga Anna as Bhutaya. He produced and starred in a lot of films, Dr. Rajkumar, which acted as a forest department driver, Johnny. He died on 17 July 2008 in Mysore. And we have a song from his film, Anantaru.

आइए नमन करते हैं परमवीर चक्र विजेता जवान निर्मलजीत सिंह सेखों को। आज उनकी पुण्यतिथि है। ये सम्मान उन्हें 1971 में मरणोपरांत मिला।

0: भारतीय वायुसेना से परमवीर चक्र के एकमात्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए उस युद्ध में वीरगति पाई जिसमें भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान से टूटकर उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। युद्ध के दौरान निर्मलजीत सिंह श्रीनगर वायुसेना के अड्डे पर तैनात थे। नेटो हवाई जहाजों पर उनके करिश्मे के लिए निर्मलजीत उत्साह उस्ताद माने जाते थे। तो नमन है माँ भारती के ऐसे सपूत को।
1: मुकेश, टुडे इज द बर्थडे ऑफ ज़रीना वहाब, इनके बारे में जरूर सुना होगा आपने।
0: बिल्कुल।
1: एन इंडियन एक्ट्रेस हु प्रेडोमिनेंटली वर्क्ड इन हिंदी एंड मलयालम फिल्म्स, नोन फॉर क्रिटिकली एक्लेम्ड रोल्स इन चिच्चोर एंड गोपाल कृष्णा इन हिंदी सिनेमा एंड मलयालम फिल्म्स लाइक मदनोत्सवम, चमरम, पालंगल एंड आडामिंडे मगन आबू। वहाब वॉज बॉर्न इन विशाखापट्टनम। शी इज फ्लुएंट इन हर मदर टंग तेलुगु इन एडिशन टू उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड बहुत अमेजिंग बात है मुकेश, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू एंड द लिसनर्स, that she met Raj Kapoor. Raj Kapoor said that you have a very ugly face. Aap itne badsurat ho ki aap kabhi filmon mein act karne ki koshish bhi mat karna. But in spite of that, she worked on her looks and she became a very good actress.
0: इसी से हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी कि इंसान को सफलता के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए।
1: बिल्कुल। And she was nominated for a Filmfare Award in the Best Actress category for Gharonda, and she's acted in many Malayalam films also. She was a very popular Malayalam actress, and I want you to listen to a song from the Malayalam film Madanolsavam.
0: Ji.

0: और श्रोताओं, आज शाम 6:30 बजे आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में महाराष्ट्र की लय लावणी और जोगवा कार्यक्रम में पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत का लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में ही इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम 7 बजे से भरतनाट्यम की प्रस्तुति भी दी जाएगी और शाम 7 बजे से ही इंडिया हैबिटेट सेंटर के गुलमोहर सभागार में द मेंटल गेम, खेलों में उच्च प्रदर्शन का मनोविज्ञान विषय पर परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। तो ये हैं आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम जिनमें आज आप शाम आज जाकर इनमें भाग ले सकते हैं। तो अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से आज्ञा लेने का। तो चलते चलते आज का सुविचार कि अपना व्यवहार हमेशा शून्य सा रखिए ताकि आप में से कोई कुछ घटा ना सके। इसी विचार के साथ मुकेश और प्रमोद को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: That's right, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 0 होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

0: रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है। अंदरूनी मुल्क वसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ियां चलती हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने इसे तकनीक की आजमाइश करने वाले कई दीगर मुल्कों पीछे छोड़ते हुए मशकूरा प्रोजेक्ट के जरिए एक नया आलमी पैमाना तय किया है। जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे ही होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन निजाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। जीन से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन से चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो दोपहर 2:45 के आसपास 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद

0: कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करना और खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को रफ्तार देना है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद 20 रियासतों के नए सिरे से तामीर किए गए 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को दुनिया के सबसे बड़े तामीर नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली पहली बराह रास्त एसी ट्रेन होगी, जो भारत के 2 अहम तरीन रूहानी और सकाफती मकामात अमृतसर और वाराणसी को मरबूत करेगी। वज़ीर आज़म 30.9 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे समेत कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से मिलने नीज, रेलवेज, हिफ्जान सेहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, तालीम और दीगर शोबों से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों से लोगों की जिंदगी, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। जराये ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो सरहदी सिक्योरिटी, हुक्मरानी, अमन कानून और तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कल जनाब शाह 18वीं बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामला पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराये ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, ITI और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा, जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। NTA ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर ना हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन कर दिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश ए मोहम्मद के 8 मुबैना

0: कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन पांच मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन पांचों को महसियाना जिले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट आरएम भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक एटीएस की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील पीआर दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश ए मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की जरूरत है। गोवा हुकूमत ने कसीनो से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसीनो में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने इस नई पाबंदी के निफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नजदीक कसीनो के जहाजों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माय भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को दो रोजा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक दो प्रोग्रामों का मकसद जमीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाती तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक इको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार छठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों को खतरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोजाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निजाम का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायजा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की कयादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज इस सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद

0: स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड, ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

मुलाकात से ही बात होती है और बात करने से ही बात बनती है जनाब, इसीलिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। और एक्सट्रोवर्ट माने जाने वाले लोग अक्सर सफल भी माने जाते हैं, क्योंकि बहुत बार सही वक्त पर सही व्यक्ति से सही बात करने पर बात बन जाती है हमारी। लेकिन ये रूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बातें बिना बोले भी की जाती हैं। और बिहेवियर साइकोलॉजी में तो अक्सर बिना कहे बिना सुने बातों को समझने की कोशिश की जाती है। वेल, तरीका और नज़रिया सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन संवाद स्थापित करना बेहद ज़रूरी है। और उस संवाद में एक रिस्पेक्ट और एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अलग अलग सोच और अलग अलग बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सके, जैसे हम रहते हैं आपके साथ। वेल, हम तो हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं आपके साथ और इन्जॉय करते हैं गोल्डन म्यूजिक को। तो फिलहाल 8:50 पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक फिल्म पाकीज़ा के इस आइकॉनिक सॉन्ग के साथ, और आवाजें रफी साहब और लता जी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग

0: के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

8:55 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और 50-30-20 रूल के बारे में वैसे तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये रूल बहुत इफेक्टिव होता है हमारी लाइफ में, खास तौर से अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों की सैलरी आने से पहले कहाँ खर्च होगी इसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अंधाधुंध खर्च करते हैं और महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनको घर का बजट मेंटेन करने में हमेशा परेशानी होती है। तो ऐसे में ये जो 50-30-20 रूल है ये हमेशा काम आता है। और इसमें बहुत सिंपली आपको सिर्फ यही करना है कि 50% सैलरी उन ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करनी है जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि घर का राशन, किराया, बिजली, पानी, स्कूल की फीस और बाकी ज़रूरी खर्चे। और 30% सैलरी वहाँ प्लान करनी है जिन खर्चों को अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, घूमना फिरना, गैजेट्स की खरीद या सैलून और पार्लर का खर्चा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन 20% सैलरी इन्वेस्ट करनी है बहुत समझदारी से, ताकि ज़रूरत के समय हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। फिलहाल 8:57 और 4 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली में थोड़ा सा वक्त आपके साथ और एक खूबसूरत गाना जिसके साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ अभी, लेकिन फिर मिलूंगी यहीं 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। टिल देन यू कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके बाद आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
2: इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनः परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ एक नया आकाश लेकर आती है, वही सूरज, वही धरती, वही रास्ते, लेकिन हर दिन की रोशनी में एक नया संदेश छिपा होता है। कहीं कोई शुरुआत आकार ले रही है, कहीं कोई प्रयास अपनी राह बना रहा है, और कहीं कोई मन अपने भीतर ही झांक रहा है। आज की सुबह भी ऐसी कई यात्राओं की कहानी लेकर आई है, ऋतु और प्रकृति के बदलते क्रम से लेकर दक्षिणायन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा तक, आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों से लेकर संगीत साधना के एक अनमोल अध्याय तक आने वाले पलों में बहुत कुछ आपके साथ साझा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी। तो आइए इस सुहानी सुबह का आरंभ करते हैं संगीत की मधुर संगति के साथ।

आकाश में सूर्य की यात्रा के साथ प्रकृति भी अपनी गति बदलती है। आज से दक्षिणायन का आरंभ माना जाता है, वर्ष का वो चरण जब सूर्य की गति का ये परिवर्तन भारतीय परंपरा में एक विशेष अर्थ भी रखता है। दक्षिणायन को साधना पथ का समय भी कहा गया है। साधना केवल किसी एक अभ्यास का नाम नहीं, ये तो स्वयं को तैयार करने की एक प्रक्रिया है, अपने विचारों को सजग करने की, अपने कर्मों में अनुशासन लाने की और अपने भीतर धैर्य का विकास करने की। हमारे खेतों में भी तो यही क्रम दिखाई देता है। किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसे समय देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और वही छोटा सा बीज धीरे धीरे जीवन से भरी फसल का रूप ले लेता है। प्रकृति का ये क्रम हमें याद दिलाता है कि हर सृजन के पीछे तैयारी होती है, जो दिखाई भले न दे पर अपना कार्य निरंतर करती रहती है। दक्षिणायन का ये काल भी कई परंपराओं में इसी तैयारी और साधना से जुड़ा है। बाहर धरती में बीज पड़ते हैं और भीतर मनुष्य अपने संकल्पों, अपने ज्ञान और अपनी चेतना के बीजों को सींचता है। ये समय है अपने अंतर्मन की चेतना को जागृत करने का, अपने विचारों को संवारने का और जीवन में नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई सजगता के बीज बोने का अवसर है ये। तो आइए इसी विचार के साथ आगे बढ़ें एक और मधुर गीत की ओर।

श्रोताओं, ऋतुएं भी तो अपनी एक भाषा रखती हैं। कभी बादलों की चादर लेकर आती हैं, कभी धूप की सुनहरी किरणों से ये दिन सजाती हैं। और इन दिनों वर्षा की आहट के बीच धरती का रंग भी तो धीरे धीरे बदल रहा है। पेड़ों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी सुगंध और हवा में घुली नमी मौसम के नए अध्याय का संकेत दे रही है। आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना तो है। अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आने वाले दिनों में भी मॉनसून की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे और मौसम की यही बदलती छटा यात्राओं का भी तो अलग आनंद देती है। आज 11:25 पर कार्यक्रम तस्वीर में हम चलेंगे अमृतसर की ओर, जहां इतिहास की स्मृतियां, आध्यात्मिक आस्था, लोक संस्कृति और स्वाद की अपनी ही एक समृद्ध दुनिया बसती है। फिलहाल आइए इस सुबह की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं एक और मधुर गीत के साथ।

0: श्रोताओं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही लौटेंगे और मधुर संगीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल लगी। सुबह की रौनक और सुरों का ये सिलसिला जारी है, तो आइए अपनी संगीतमय यात्रा को आगे बढ़ाएं। दक्षिणायन की ये ऋतु हमें ये याद दिलाती है कि हर सुदृढ़ भविष्य की शुरुआत एक मजबूत आधार से होती है। समाज का विकास भी तभी सार्थक है जब अवसर सबसे अंतिम छोर तक पहुंचें। और इसी विचार को साकार करती है भारत सरकार की पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना के दो प्रमुख आयाम हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। और शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से, क्षमा कीजिएगा, ये योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से लेकर शहरों के पथ विक्रेताओं और शहरी आजीविका तक, इसका उद्देश्य यही है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और यदि आप भी इस योजना के बारे में अधिक जानकारी या पात्रता जानना चाहते हैं, तो अपने निकटतम ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय, नगर निकाय या फिर आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ आइए सुने एक और मधुर।

जब दुनिया के अलग अलग देश एक ही बात पर साथ खड़े हों, तो वो एक समझौते से बढ़कर एक साझा विश्वास बन जाता है। विश्वास इस बात का कि न्याय की आवाज सीमाओं से बड़ी है। इसी भावना के साथ हर वर्ष 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 1998 में इसी दिन रोम स्टैट्यूट यानी रोम संधि को अपनाया गया था और इसी संधि के आधार पर आगे चलकर नीदरलैंड्स के हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई। यहाँ नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे गंभीर विषयों पर सुनवाई की जाती है। और न्याय केवल कानून का विषय कहाँ है, बल्कि मानव गरिमा और उत्तरदायित्व का भी आधार है। इसी विचार के साथ आइए लौट चलें अपनी संगीत यात्रा पर

श्रोताओं, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम हैं जो अपने समय से आगे की सोच का परिचय देते हैं। मेघालय के महान स्वतंत्रता सेनानी तिरोत सिंह का जीवन भी साहस और स्वाभिमान की ऐसी ही कहानी कहता है। 19वीं शताब्दी में खासी समुदाय के इस वीर नेता ने ब्रिटिश शासन के विस्तार का विरोध किया और अपने लोगों के अधिकारों, भूमि और स्वतंत्रता निर्णय की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। उनके संघर्ष के और विचार, इन सभी को हम नमन करते हैं। वे सोचते थे कि किसी भी समाज की शक्ति उसके लोगों की भागीदारी और आत्मसम्मान से होती है, और समय के साथ समाज भी आगे बढ़ता है और अवसरों के नए द्वार खुलते हैं। इतिहास के ऐसे अध्याय हमें बताते हैं कि समय भले ही बदलता रहता है, लेकिन साहस और स्वाभिमान की कहानियां पीढ़ियों तक साथ चलती हैं।

साधना का सबसे मधुर स्वर शायद संगीत में ही सुनाई देता है। एक एक स्वर को साधने में वर्षों का अभ्यास, धैर्य और समर्पण लगता है और तभी वो साधना आगे चलकर परंपरा बनती है। आज ऐसे ही संगीताचार्य पंडित लालमणि मिश्र के समर्पण भी स्वाभाविक है। इन्होंने इस विलक्षण वाद्य विचित्र वीणा को नई प्रतिष्ठा दी और निर्माण किया श्रुति वीणा का। संगीत शास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। भरत मुनि द्वारा वर्णित 22 श्रुतियों को उन्होंने अपने शोध और साधना के माध्यम से पहली बार श्रव्य रूप में प्रस्तुत कर भारतीय संगीत जगत को एक अमूल्य धरोहर प्रदान की। ये उपलब्धि केवल एक कलाकार की नहीं है, बल्कि एक साधक, शोधकर्ता और परंपरा के संरक्षक की थी। जिस प्रकार साधना से स्वर परिपक्व होता है, उसी प्रकार समर्पण से परंपराएं भी जीवित रहती हैं। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ आइए अब सुनते हैं एक मन भावन गीत।

श्रोताओं, हर प्रभात का सूर्योदय हमें एक नया आरंभ लगता है, पर प्रकृति का ये दृश्य भी एक सुंदर सत्य समेटे हुए है। सूर्य तो अपने प्रकाश में स्थिर है, बदलती है उसकी ओर मुख करती हुई हमारी पृथ्वी, और शायद जीवन में भी उजाला बाहर से कम भीतर से अधिक जन्म लेता है। कई बार उजाला इसलिए नहीं आता कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि हमारी दृष्टि में एक नया प्रकाश उतर आया है। तो चलिए आज हम इतना सा प्रयास करें कि जिससे भी मिलें उससे थोड़ा सा अपनापन लेकर मिलें। एक मुस्कान, एक धन्यवाद या किसी की बात पूरे मन से सुन लेना। कई बार इतनी सी बातें भी किसी के दिन की सबसे अच्छी याद बन जाती हैं। चलिए तो आज का दिन ऐसे ही किसी छोटी सी बात के नाम किया जाए, और इसी छोटी सी बात को अपने साथ लिए आज की संगीतमय यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मन में उत्साह भरा रहे और जीवन की ये साधना निरंतर आगे बढ़ती रहे। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज सुबह विश्व समाचारों के पश्चात ठीक 10:30 पर फिर होगी हमारी मुलाकात कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में। अपने पसंद के गीतों की फरमाइश और अपने संदेश हमें भेजिए fmgoldair@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9868687 पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति, प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: ऐकायचंय गीत माहितीच्या मनोरंजनाचा गोड तराणा,
6: FM गोल्ड ट्यून करा, नका शोधू उगच बहाणा।
5: नमस्कार श्रोते हो, मी अभिजित खांडकेकर।
6: नमस्कार, मी सुखदा खांडकेकर।
5: 100.1 MHz वर ऐकत रहा FM गोल्ड।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: एक सांझड़।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मी अजित कडकडे, सुमधुर गाणी, गोड आठवणी, मस्त गप्पा, माहिती, मनोरंजनासाठी ऐकत रहा आकाशवाणी मुंबईची FM।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometre long Delhi-Amritsar-Katra expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometre Delhi-Amritsar-Katra expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given

बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त 1:11:04 और इस समय कलाकार बेमिसाल में हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री जरीना बहाव का जिक्र होगा आज इस सफर को तय करते हुए। हिंदी फिल्मों के अलावा जरीना तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काफी सक्रिय रहीं। चित्तचोर और घरौंदा जैसी फिल्मों के लिए उन्हें बेहद अच्छे तरीके से जाना जाता है। इन फिल्मों में उनकी अभिनय प्रतिभा खुलकर सामने आई है और इन फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने फन का लोहा भी मनवाया है। बेहद ही साधारण से नैन नक्श की अदाकारा अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी को आकर्षित करती रही हैं। इन्हीं के बारे में ढेर सारी बातें करते हुए आज पूरा करेंगे कलाकार बेमिसाल का यह सफर। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब 17 जुलाई 1959 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जन्मी। जरीना को कई भाषाओं में महारत हासिल है। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का जरीना पूरा ज्ञान रखती हैं। इनकी दो बहनें और एक भाई हैं। इन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण हासिल किया। FTII पुणे से अभिनय में स्नातक रहीं जरीना। फिल्म इश्क इश्क इश्क ये रही जरीना वहाब की पहली फिल्म। ये फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, पर इनकी दो फिल्मों ने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया और वो फिल्में रही चित्तचोर और घरौंदा। लोगों ने इनके अभिनय की दिल खोलकर तारीफ की। इसके बाद वो राज बब्बर के साथ फिल्म जज्बात में नजर आई। जरीना वहाब को फिल्म घरौंदा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिल चुका है। तो चलिए घरौंदा फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: आकाशवाणी समाचार सोनल परमार वाचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हरियाणा जींद खाते थी देश की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन ने लीली झंडी आपी। 14,700 करोड़ रूपया थी वधुनी विकास परियोजना खातमुहूर्त कर्यु। प्रधानमंत्री आज पंजाब जलंधर में 5,470 करोड़ रूपया थी वधुना रेलवे अने मार्ग परिवहन परियोजना लोकार्पण खातमुहूर्त करशे। दिल्ली सरकारे स्टार्टअप्स अने तेना नीति माळखाने मंजूरी आपी। डीजीएमए आगामी सूचना सुधी होर्मुज सामुद्रधुनीमांथी पसार थता जहाजों पर भारतीय नाविकों ने तैनात न करवा निर्देश आप्यो। अने पश्चिम बंगाळना मुर्शिदाबादमां ट्रेन अकस्मातमां 4ना मौत। मृतकना परिवारने रेलवे 10 लाख रूपया अने राज्य सरकार 5 लाख रूपियानुं वळतर आपशे। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हरियाणाना जींद रेलवे स्टेशन अने सोनीपत वच्चे दौड़ती भारतनी प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन ने लीली झंडी बतावी। आ हाइड्रोजन संचालित ट्रेननुं लॉन्चिंग रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ अने टकाऊ परिवहन अपनावा तरफ एक महत्वपूर्ण पगलू छे। आ ट्रेन स्वदेशी टेक्नोलॉजीनो उपयोग करीने विकसावामां आवी छे, जे अद्यतन रेलवे एंजीनियरिंगमां देशनी वधती जती क्षमताओनुं प्रदर्शन करे छे। प्रस्तुत छे एक अहेवाल।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है, जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: दरमियान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमना भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वेना भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेमे भारतना प्रथम हाइड्रोजन संचालित ट्रेनना लॉन्चनु स्वागत कर्यु, तेने भारत माटे एक मोटी सिद्धि गणावी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए कह्यु, गत 12 वर्षमां भारतीय रेलवेमां थयेला मोटा परिवर्तनथी देशने अनेक लाभ थया छे। हरियाणामां जींदना एकलव्य स्टेडियम खातेथी 14,700 करोड़ रूपियाथी वधुनी विकास परियोजनानुं खातमुहूर्त कर्या बाद जाहेरसभाने संबोधता श्री मोदीए कह्यु, पश्चिम एशियामां चाली रहेला तणाव वच्चे सर्जायेला ऊर्जा पुरवठाना पड़कार वच्चे रेलवेनुं आधुनिकीकरण अने डीझल परनी निर्ભરતા ઘટાડવી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ છે। આજે શરૂ થયેલી દેશની પહેલી હાઇડ્રોજન ટ્રેનના સંચાલનને શ્રી મોદીએ ભારતીય રેલવેનું મોટું પગલું ગણાવ્યું।
2: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बपोरे पंजाबनी मुलाकात लेशे। तेमनी मुलाकात दरमियान तेओ जलंधरमां 5,470 करोड़थी वधुना रेल अने रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सनुं उद्घाटन अने शिलान्यास करशे। आ प्रोजेक्ट्सनो उद्देश्य प्रदेशमां कनेक्टिविटीने मजबूत बनावा, मुसाफरोनी सुविधाओ वधारवा अने आर्थिक विकासने वेग आपवानो छे। आ मुलाकात दरमियान अनेक महत्वपूर्ण विकास प्रोजेक्ट शरू करवामां आवशे। आनाथी पंजाबनी परिवहन व्यवस्थाने नवी गति मळवानी अपेक्षा छे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज रात्रे 3 दिवसना प्रवासे पश्चिम बंगाळ पहोंचशे। आवतीकाले श्री शाह राज्यना जीमाकच्छा बॉर्डर आउटपोस्ट खाते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफनी 18मी बटालियननी मुलाकात लेशे, ज्यां तेओ एक प्रहरी सम्मेलन संबोधित करशे। वृक्षारोपण अभियानमां भाग लेशे अने अनेक विकास प्रोजेक्ट्सनुं उद्घाटन अने शिलान्यास करशे। श्री शाह बीएसएफ कर्मचारीओ साथे पण वातचीत करशे। गृहमंत्री सिलीगुड़ीना उत्तरकन्या खाते अनेक उच्चस्तरीय बैठको योजशे। આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો। આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ AIR ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો। વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/GU અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIR_ABADને ફોલો કરશો। દિલ્હી સરકારે સ્ટાર્ટઅપ અને તેના માટે નીતિ માળખાને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ હેઠળ નવીનતા અને સ્વરોજગારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આગામી 5 વર્ષમાં 400 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કરવામાં આવશે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ નીતિનો ઉદ્દેશ્ય દિલ્હીને દેશમાં નવીનતા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાના અગ્રણી કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવાનો અને યુવાનોને તેમના વિચારોને સફળ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે સમર્થન મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. વધુ માહિતી સાંભળીએ અમારા પ્રતિનિધિ પાસેથી.
3: इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे. शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी. सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी. दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेरिट

फिल्म चित्तचोर का ऑफर उन्हें घर बैठे ही मिला। राजश्री प्रोडक्शन वाले ज्यादातर नए चेहरों को लेकर फिल्म बनाया करते थे, उन्हें भी ये फिल्म करने का मौका मिला। फिल्म का डायरेक्शन बसु चटर्जी कर रहे थे। गांव में रहने वाली जरीना को शहर में रहने वाले एक लड़के से प्रेम हो जाता है। अमोल पालेकर उनके अपोजिट रहे फिल्म में। मधुर संगीत, उम्दा कहानी, दोनों ही कलाकारों का शानदार अभिनय और जादुई निर्देशन, कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन लोगों के सिर चढ़ बोला। इस तरह जरीना का अभिनय लोगों की नजरों में बस गया। और सचमुच हमेशा ये जब भी उनकी फिल्में देखते हैं ना, तो जमीन से जुड़ा एक किरदार, एक जैसे बोलते हैं करेक्टर, हमें लगता है कि वो कहीं हमारे आपके सबके बीच में ही है।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता,
2: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और बातें जानी मानी अभिनेत्री ज़रीना वहाब की। अपने जीवन साथी आदित्य पंचोली से इन्हें प्यार हुआ फिल्म कलंक का टीका इस सेट पर। 1986 की ये फिल्म रही। हालांकि आदित्य उन दिनों न्यू कमर थे, पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 20 दिन बाद ही उन्होंने शादी रचा डाली। ज़रीना वहाब के दो बच्चे हैं, सना और सूरज पंचोली। बच्चों के बड़ा होने पर ज़रीना एक बार फिर सक्रिय हुई फिल्म जगत की तरफ, सिनेमा की तरफ। उनकी मलयालम फिल्म आदिमिते मक्कनबू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म को ऑस्कर में भी भेजा गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म रक्त चरित्र में भी वो नजर आई। माई नेम इज खान और अग्निपथ में भी ज़रीना नजर आई। ज़रीना की बेहतरीन अदाकारी से भरी ये दिल को छूने वाली फिल्में हम यूं ही देखते रहेंगे और उनके फन, उनकी प्रतिभा को ऐसे ही सराहते रहेंगे।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाजों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खित्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैनल अक्वामी अजाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ और पायदार नकलो हमल को अपनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल इख्तियार किए जाने की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत वाले कौमी शाहराह प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 157 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। इस एक्सप्रेस वे से दिल्ली और कटरा के दरमियान सफर के वक्त में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। अभी तक

0: ये सफर तकरीबन 14 घंटे में तय होता है, लेकिन इस ट्रेन के आगाज के बाद ये सफर महज तकरीबन 6 घंटे रह जाएगा, जबकि दिल्ली से अमृतसर का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी तक इस फासले को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालिया बरसों के दौरान तरक्की का एक नया मरहला शुरू हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज से जिंद को भारत की तारीख में एक खुसूसी मकाम हासिल हुआ है।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: वजीर आजम ने कहा कि आज जिंद बीजेपी और एनडीए की अच्छी हुक्मरानी की एक मिसाल बनकर उभरा है। इस मौके पर रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज को मुल्क की टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक तारीखी हुसूलिया भी करार दिया है।
2: आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जिंद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।
0: ये ट्रेन भारत में ही तैयार की गई है, जिसमें मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेलवे इंजीनियरिंग की जिद्दत में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का अंदाजा होता है। इस ट्रेन की रफ्तार जिंद सोनीपत सेक्शन पर 75 किलोमीटर फी घंटा है और ये अपने डिजाइन के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये ट्रेन न सिर्फ महफूज दर है बल्कि 89 किलोमीटर के इस सेक्शन पर यह सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें तकरीबन 2,600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3,200 हॉर्स पावर का प्रोपल्जन निज़ाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन को बिजली में बदल देती है, जिससे ये ट्रेन आगे बढ़ती है। इस अमल के जरिए सिर्फ पानी के बुखारात जिम्नी पैदावार के तौर पर बनते हैं, जिसके नतीजे में ट्रेन चलने के दौरान कार्बन हरगिज खारिज नहीं होती। ये ट्रेन कई सतहों के हिफाजती निज़ाम से लैस है, जिसमें हाइड्रोजन लीक, गर्माई, शोलों और धुएं का पता लग जाता है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समंदरी इंतजामिया के डायरेक्टोरेट जनरल DGMA ने बहरी जहाजों के मालिकान, मैनेजर्स और भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो उन जहाजों पर भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें जो मजीद अहकाम जारी होने तक आबनाई हुरमुज से सफर कर रहे हैं। समंदरी इंतजामिया ने खलीज के खित्ते में सिक्योरिटी की संगीन होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय मल्लाहों की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने बताया कि पिछले कुछ दिन से मर्चेंट जहाज़ों पर हमलों के हालिया वाकयात की वजह से खास तौर पर तनाज़े से मुतासर इलाके में मल्लाहों और कमर्शल जहाज़ों को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। हुकूमत पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करेगी। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों से तआवुन तलब करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज के खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और ये अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान कई अहम कवानीन को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 19 तारीख से मोल्दोवा, शिमाली मकदोनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को सदर जमहूरिया मोल्दोवा जाएंगी और अपनी हम मनसफ माया संधू के साथ मुलाकात करेंगी। और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 21 तारीख से शिमाली मकदूनिया का दौरा करेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख से रोमानिया का दौरा करेंगी। अपने दो रोजा दौरे के दौरान रोमानिया के सदर निकोसोर डान और रोमानिया के उबूरी वजीर आजम एली बोलोजान के साथ भी मीटिंग करेंगी। गुजरात के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हें पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से मुतालिक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की शिनाख्त बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कदीवाला, मोहम्मद पालनपुर, शाफिया रईस मुक्ति और मोहम्मद हसन कारिया के तौर पर हुई है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बरादरी के लोगों ने बुध को बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात प्लस या जीएसपी प्लस की आम की गई स्कीम के तहत तिजारती फायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा जीएसपी फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी वादों पर उसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल से जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकोहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में खेल शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जींद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। डीजीएमए ने बहरी जहाजों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खत्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए जीएसपी फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी अजाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8

0: strengthening its bilateral ties with these countries, along with engagement with the wider Eastern European region. India's Rafale fighter aircraft and C-17 transport aircraft have reached Australia to participate in the Royal Australian Air Force's premier multinational air combat exercise, Pitch Black 2026. The exercise will be held from the 20th of July to the 7th of August at Royal Australian Air Force bases in Darwin, Tyndall and Amberley in northern Australia. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha, parts of Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, Uttarakhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim are also expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. A report.
1: The weather department also predicted thunderstorms and lightning today over Gangetic West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rayalaseema and Telangana. Similar weather conditions are also expected at places over parts of Northeast India, Andaman and Nicobar Islands, Bihar and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Meanwhile, heat wave conditions are likely to persist today over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. The Met department said that Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience a hot and humid day today. With Priya, this is Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
0: In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि

0: राणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविक

0: की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी

0: के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नादब्रह्म आज शुभलक्ष्मी कुलकर्णी यांचं गायन आपल्याला ऐकत आहोत। ही नागपूर केंद्राची निर्मिती आहे। शुभलक्ष्मी कुलकर्णी यांनी गायलेला राग गौडसारंग। विलंबित ख्यालाची बंदिश 1 तालात आहे। मध्यलय बंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ संदेश पोपटकर यांनी केली आहे आणि हार्मोनियमची साथ श्रीकांत पिसे यांनी केलेली आहे। ऐकूया शुभलक्ष्मी कुलकर्णी यांनी गायलेला राग गौडसारंग।

0: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोडा अने न्यूज ऑन AIR आ मोबाइल एप पर एकदम खरा सोना जेवो कार्यक्रम गीत गुर्जरी अने गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आजे आपनी साथे छे कौन कौन भाई तमे
1: बिपिन मेवाड़ा
0: ओहो आरजे बिपिन मेवाड़ा अने हूँ एज तरुलता करोड़िया तो बिपिन मेवाड़ा अने तरुलता करोड़िया ना सस्ने
1: नमस्कार।

प्रभु रोज रे बगाड़ू तारी तो करी।

मारवाड़नी झालावाड़ी मारवाड़नी लाड़ी पोरबंदरनी पातड़ी के जामनगरनी जाड़ी होय भले ने अमदावादी घुमतीपुरनी गांडी होय भले सूरतनी सुंदरी पहरी बोबड़ी बाड़ी लामा पनानी ठुमा पनानी लीली सूखी वाड़ी। अरे मने बापला दियो एक छोकरी मारा घर नु छप्पर भाड़ी होय भले ने पछी

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन इसका लाभ शहर तक ही सीमित नहीं है बल्कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहाँ देश के कई बड़े संस्थान मौजूद हैं।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 2 नए मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 75 पुनः विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-25 अवधि की संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा

0: और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की शेन युफोई से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana, marking a major step towards clean and sustainable rail transport. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects. He dedicated the 157-kilometre Delhi-Amritsar-Katra expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours and between Delhi and Amritsar to around 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said Indian Railways has undergone a major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.
2: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Speaking on the occasion, Railway Minister Ashwini Vaishnaw called the launch of the country's first hydrogen-powered train a historic achievement, saying it reflects India's resolve to develop indigenous hydrogen technology. Later, the Prime Minister launched several developmental projects in key areas, including the health sector in Chandigarh. Addressing a gathering, Prime Minister Modi said, with the development of Chandigarh, people's lives have been transformed, but its benefits extend beyond the city, reaching the people of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh as well. He added that today the advanced healthcare facilities at PGI Chandigarh are being expanded, which will benefit lakhs of people. Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure a smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. President Drobdi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from the 19th to the 25th of this month. Briefing media in New Delhi, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George said that these state visits are being undertaken at the invitation of the Presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania. He said that the visit is of considerable historical significance as it will mark the first ever bilateral visit by an Indian president to the Republic of Moldova and North Macedonia.

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ और बेहतरीन नगमे।

0: प्रेम बंधन फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन

0: अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi, invites applications for the recruitment of one senior project associate under the project National Certification System for Tissue Culture Raised Plants in the Division of Plant Pathology. Interested candidates may refer to the detailed eligibility criteria and application procedures on the official IARI website. The walk-in interview will be held on 28th July 2026 at 9:30 a.m. at ICAR-IARI New Delhi. Any updates, corrigendum or modifications will be published only on the official website. So for details, kindly note down www.iari.res.in. I repeat, it is www.iari.res.in. The Pension Fund Regulatory and Development Authority, a statutory regulatory body established under the PFRDA Act 2013, invites applications for the position of legal advisor on contract basis. PFRDA is responsible for promoting, developing and regulating the pension sector in India. The appointment will initially be for a period of 2 years with a consolidated remuneration of 3 lakh rupees per month. Candidates with suitable legal qualifications and professional experience may apply as per the eligibility conditions available on the official website. The last date for submission of applications is 23rd July 2026. Detailed terms, eligibility requirements and application format is available on the PFRDA website. Kindly look up www.pfrda.org.in. Indian Institute of Information Technology, Sonipat, invites applications from eligible Indian nationals for recruitment to the post of assistant professor on temporary basis. The institute is seeking dynamic and result-oriented candidates for teaching positions. Interested candidates can download the application form and detailed eligibility criteria from the official website. Completed applications along with supporting documents must reach the institute by 25th July 2026, 5 p.m. For details, kindly look up the official website, that is at www.iitsonipat.ac.in. I repeat, it is www.iitsonipat.ac.in. Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, BCPL, a Schedule B Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, is the dedicated petroleum chemical complex of the Northeast region committed to sustainable operations and inclusive growth. BCPL invites applications from eligible candidates for various executive level positions. The vacancies include senior and middle management positions such as General Manager Chemical, Deputy General Manager Fire and Safety, Senior Manager Chemical, Finance and Accounts, Mechanical and Marketing, Chief Manager Fire and Safety and Human Resources, Manager Chemical and Human Resources, Deputy Manager Electrical, Instrumentation, Mechanical, Finance and Accounts, Contract and Procurement, Human Resources and Information Technology, Senior Engineer Chemical, Environment and Instrumentation, and Senior Officer, Finance and Accounts, and Company Secretariat. The posts are offered across different executive grades from E1 to E7, with the upper age limit ranging between 30 to 54 years, depending on the position and grade. Reservation benefits will be provided to eligible candidates belonging to UR, OBC, SC, ST, EWS and persons with benchmark disabilities. The approximate annual CTC is 13.7 lakh for Deputy Manager CS and 11.3 lakhs for Assistant Manager CS. Candidates with required educational qualifications, professional experience and eligibility criteria may apply as per the detailed advertisement. The complete information regarding qualifications, experience, pay scale, category-wise vacancies and online application procedure is available on the official BCPL website. Kindly look up www.bcplonline.co.in. I repeat the website, it is www.bcplonline.co.in. And now we have the employment news in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध यूआरएल लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग इन प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप महाप्रबंधक ज्ञान सेवाएं 1 पद, उप महाप्रबंधक पूर्व छात्र संबंध 1 पद, वरिष्ठ प्रबंधक लेखा परीक्षा 1 पद, प्रबंधक अकादमिक 1 पद, प्रबंधक प्रत्यायन 1 पद, सहायक प्रबंधक आईटी अवसंरचना 1 पद और सहायक प्रबंधक मैकेनिकल अवसंरचना 1 पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2026। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 और 2 के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 30 पद हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध यूआरएल लिंक fr.iitism.ac.in पर आप जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त

0: 26। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर एथलेटिक्स एक पद, सहायक प्रोफेसर निशानेबाजी एक पद, सहायक प्रोफेसर भारोत्तोलन एक पद, सहायक प्रोफेसर बैडमिंटन एक पद, सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा तीन पद, सहायक प्रोफेसर खेल मनोविज्ञान एक पद और सहायक प्रोफेसर खेल पोषण एक पद। इसके अतिरिक्त गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल एक पद और जनसंपर्क अधिकारी एक पद। विस्तृत अधिसूचना राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.nsu.ac.in। आवेदन 9 अगस्त 2026 तक किया जा सकता है। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कोलकाता में प्रतिनियुक्ति आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 1 के 2 पदों को भरा जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। सो द गुड न्यूज ऑफ द डे इज दैट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड एंड फ्लैग्ड ऑफ बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टुडे, ब्रिंगिंग आवर कंट्री ऑफिशियली इन द एलीट Global League of Hydrogen Powered Rail Transport by joining nations like Germany, France, China, Japan, and of course the US. And today, India marks another major milestone in this way in its transition to zero emission and green mobility. We have seen that India's path through Atmanirbharta has evolved from a crisis management response during the COVID-19 pandemic into a comprehensive long-term industrial and strategic policy, building a world-class infrastructure that represents our modern India. And this is what we bring to you in Parikrama, our country's developmental stories straight from the correspondents from different regions. We will discuss more on the new hydrogen powered train and many other stories in our afternoon magazine today. But right now, let's begin with the news headlines at this hour. We begin with Prime Minister Narendra Modi's Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees.
1: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए।
2: European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits.
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान।
2: And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. And Karishma, as always, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Day for International Justice and also on India's first hydrogen-powered train. Karishma, have you ever thought of what happens when a crime is so grave that it shakes the conscience of the entire

0: the 17th of July. It's a day that reminds us of a simple but powerful idea that no one should be above the law, no matter how powerful they are.
1: अब जरा सोचिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई साइकिल चोरी कर ले तो किस तरीके से स्थानीय पुलिस और अदालतें उस मामले को देखेंगी?

0: तो इसके साथ ही सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है श्रोताओं, लेकिन क्या होगा अगर किसी देश का कोई नेता किसी टकराव के दौरान बड़े पैमाने पर हथियारों का आदेश दे दे, या धर्म या नस्ल के आधार पर पूरे समुदाय को निशाना बनाया जाए? क्या आम अदालतें हमेशा इतने बड़े पैमाने के अपराधों को संभाल सकती हैं? इसका जवाब कहीं न कहीं यही है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है.
1: And that is why the world understood that extraordinary crimes required an extraordinary system of justice. This year's theme is promoting justice, accountability and human rights worldwide. This reminds us that justice is not just only about punishing the guilty, it's also about standing with victims so as to protect the human dignity and also making sure that such tragedies are never ever repeated.
0: और इंटरनेशनल जस्टिस के लिए वर्ल्ड डे की कहानी कल शुरू नहीं हुई थी. असल में इसकी शुरुआत लगभग 3 दशक पहले 1998 में हुई थी, और वह भी किसी कोर्ट रूम में नहीं बल्कि इटली के रोम में एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर. 120 देशों के प्रतिनिधि इस सोच के साथ एक साथ आए कि दुनिया के सबसे बुरे अपराधों के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए. उनकी यह सोच 1998 में इसी दिन साकार हुई जब उन्होंने रोम स्टैचू को अपनाया, और यह संधि थी जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की नींव रखी.
1: राइट, एंड अ फ्यू इयर्स लेटर ऑन 1st of July 2002, आफ्टर इनफ कंट्रीज हैड रेटिफाइड द ट्रीटी, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीसी ऑफिशियली बिगन इट्स वर्क. एंड टुडे द कोर्ट इज हेडक्वार्टर्ड इन द हेग in Netherlands. Unlike the International Court of Justice, which settles disputes between countries, the ICC prosecutes individuals accused of committing the world's most serious crimes.
0: और ये तब दखल देता है जब किसी देश का अपना न्याय तंत्र सही तरीके से मुकदमा चलाने में असमर्थ हो या ऐसा न करना चाहता हो. तो हम किसी तरह के अपराधों की बात कर रहे हैं, इसके भी 4 प्रमुख प्रकार हैं. पहला, नरसंहार. यह तब होता है जब किसी पूरे राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को खत्म करने के इरादे से लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है.
1: एंड इफ वी मेंशन द सेकंड वन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. दीज इंक्लूड वाइडस्प्रेड और सिस्टमैटिक अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस सच एज मैस मर्डर, टॉर्चर और इवन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट.
0: बिल्कुल. और श्रोताओं, इसके साथ ही अगर तीसरे मुख्य प्रकार की बात करें तो इसमें युद्ध अपराध भी शामिल है. इनमें युद्ध के नियमों का गंभीर उल्लंघन शामिल है, जैसे जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला करना या फिर युद्ध के प्रतिबंधित तरीकों का इस्तेमाल करना.
1: एंड द फोर्थ वन वुड बी द क्राइम ऑफ एग्रेशन, व्हिच रिलेट्स टू द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ अनलॉफुल मिलिट्री एग्रेशन बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर.
0: तो अब एक बात सोचिए, जयपुर, कोचि, शिलांग या गुवाहाटी में बैठा कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्याय के बारे में क्यों सोचे? क्योंकि न्याय का कोई पासपोर्ट नहीं होता. जब दुनिया में कहीं भी जवाबदेही तय होती है तो इससे हर जगह का एक मजबूत संदेश भी जाता है कि इंसानी जिंदगी की अहमियत है, और जो लोग सबसे गंभीर अपराध करते हैं वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.
1: And Karishma, here I would say that this is where India gives us something to be truly proud of. India has always believed that justice is not merely a legal principle, it is a civilizational value. From the ancient ideal of dharma to our constitution's promise of justice, that is social, economic and political, in its very preamble, the idea of fairness has always been central to our national identity, isn't it?
0: बिल्कुल सही कहा आपने. और हमारी अदालतें, हमारे लोकतांत्रिक संस्थान और कानून के शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उस विरासत को और मजबूत कर रहे हैं. और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के सामने भी चुनौतियां हैं. राजनीतिक मतभेद, सीमित सहयोग और वैश्विक संघर्ष

0: परीक्षाओं की जटिलता अक्सर जवाबदेही तय करना मुश्किल कर देती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम न्याय के लिए कोशिश करना छोड़ दें?
1: नॉट एट ऑल। हिस्ट्री हैज शोन अस दैट लास्टिंग पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन साइलेंस और इम्प्यूनिटी। जस्टिस मे टेक टाइम बट इट रिमेन्स वन ऑफ ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स अगेंस्ट वायलेंस एंड ऑप्रेशन।
0: और दुनिया भर में यह दिन कॉन्फ्रेंस, जागरूकता अभियानों, शैक्षिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक चर्चाओं के जरिए मनाया जाता है। इसका मकसद सीधा सा है, लोगों को यह याद दिलाना कि न्याय सिर्फ जजों और वकीलों की ओर से ही नहीं मिलता, बल्कि हर किसी की यह जिम्मेदारी होती है।
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू हियर द वर्ड्स इंटरनेशनल जस्टिस, डोंट जस्ट थिंक ऑफ देम ओनली एज अ लीगल जागन और डिस्टेंट कोर्ट रूम्स एंड वेल जस्टिस मे नॉट इरेज द पास्ट बट इट कैन शेप द फ्यूचर।
0: और न्याय पीड़ितों से कहता है कि आपको भुलाया नहीं गया है और दोषियों से कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
1: एंड जस्टिस ऑल्सो टेल्स द वर्ल्ड दैट ह्यूमन डिग्निटी मस्ट ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि जवाबदेही के जरिए शांति बनाए रखने की एक वैश्विक प्रतिबद्धता है।
1: एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन राइटली सेड, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। And moving on in the second dateline, we have a discussion on India's first hydrogen-powered train. What if I told you that a train could run without diesel, Karishma, without petrol, and leave behind nothing but water vapor? Sounds like something straight out of a science fiction movie, doesn't it? Well, not anymore, because today, India has turned that imagination into reality. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana on the Jind-Sonipat route.
0: तो अब यहाँ पर श्रोताओं के लिए एक ये भी सवाल है कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि डीजल के बजाय यह ट्रेन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली बनाती है, जिससे ट्रेन चलती है और वातावरण में सिर्फ पानी की भाप निकलती है।
1: साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड हियर इज समथिंग दैट मेक्स दिस अचीवमेंट इवन मोर रिमार्केबल। ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, Japan, China and the United States currently operate hydrogen-powered trains. And with today's launch, India has proudly joined this exclusive club.
0: लेकिन भारत ने सिर्फ इस आइडिया की नकल नहीं की है, इसने कहीं न कहीं एक दो कदम उससे भी आगे निकल चुके हैं। दुनिया भर में ज्यादातर हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेनों में सिर्फ दो या तीन कोच होते हैं और इनका इस्तेमाल छोटी रीजनल सर्विस के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत की हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें लगभग 2600 यात्री सफर कर सकते हैं।
1: वेल दैट्स लाइक ट्रांसपोर्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन of a small town in a single journey, and the train is not just bigger, it's stronger too. With a power capacity of 3,200 horsepower, it is among the most powerful and longest hydrogen-powered passenger trains in the world.
0: और यह जींद सोनीपत रूट पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसका डिजाइन स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमारे कुछ सुनने वालों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हाइड्रोजन तो बहुत तेजी से आग पकड़ने वाली गैस है, तो क्या यह वाकई सुरक्षित है?
1: Well, a very valid question, Karishma, though, and its answer lies in the train's advanced safety systems. It is equipped with multiple layers of protection that continuously monitor for hydrogen leaks, heat, flames, and smoke.
0: और इस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जींद में एक खास हाइड्रोजन सुविधा भी बनाई गई है, जिससे ट्रेन का सुरक्षित, भरोसेमंद और कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।
1: Perhaps the most satisfying part of this story is this, that the train has been designed, engineered and integrated entirely in India using indigenous technology.
0: तो इसी के साथ श्रोताओं, जैसे ही भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन के पहिए घूमने लगते हैं, वे सिर्फ यात्रियों को ही नहीं ले जा रहे हैं बल्कि वे एक संदेश भी ले जा रहे होते हैं कि एक ऐसा संदेश कि भारत सिर्फ साफ सुथरी ऊर्जा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है जो भविष्य को आकार देंगी।
1: Yes, Karishma, the story of a nation isn't written in a single day. It's rather written through countless milestones like these, and today another remarkable chapter has been added to India's journey of progress.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या विशेष है। और सबसे पहले बात ओडिशा की करेंगे। पुरी में भव्य रथ यात्रा आध्यात्मिक केंद्र बनी हुई है। वहीं कल भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा ओडिशा से पूरी गूंज उठी। पूरे भारत में जीवंत जुलूसों, खूबसूरती से सजाए गए रथों, भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और महाप्रसाद वितरण ने समुदायों को एक साथ लाया। एक रिपोर्ट।
2: In Ahmedabad, Gujarat's historic 149th Jagannath Rath Yatra began with the traditional Pahind Vidhi performed by the Chief Minister. In Delhi, the Jagannath Temple at Hoj Khas hosted the city's 48th Rath Yatra with kirtans, bhajans and Odia rituals. In Patna, ISKCON's grand procession featured a 40-foot hydraulic chariot, flower showers and 108 varieties of bhog. Devotees in Visakhapatnam, Jaipur, Guwahati, Kolkata, Gurugram and several other cities also marked the occasion with colorful chariot processions, Harinam Sankirtan, cultural programs and community feast, each adding its own regional flavor to the celebration. The spirit of Rath Yatra also traveled across the globe, from Chicago and London to Zurich, Dublin, New York, Toronto, Melbourne, Johannesburg, Nairobi, Paris and Berlin. ISKCON temples and local communities organized chariot festivals featuring devotional singing, cultural performances, yoga sessions and free prasadam, welcoming people from all backgrounds. The message of Rath Yatra remains timeless, that Lord Jagannath's journey is not merely the movement of a chariot but a celebration of faith, unity and humanity that transcends borders, languages and cultures. Aparajita Snatak, Akashvani News, Delhi.
1: And now from Odisha, we take you to Keralam, where the month-long observance of Ramayan Masam, which means the month of Ramayan, begins in that state with the start of Kari Kadakam, the last month of the Malayalam calendar. For generations in Keralam, Kari Kadam has been observed as a period of prayer, reflection and a spiritual renewal. And from today, the recitation of the Ramayan will become a daily ritual in thousands of homes and temples across the state. Temples have also lined up special recitation sessions and devotional programs throughout the month. Our correspondent has more on this.
3: Karkidakam, which falls between mid-July and mid-August, is traditionally known as the month of heavy monsoon rains in Kerala. In early times, when the season often brought illness and hardship, families tuned to the Ramayana for hope, courage and inner peace. The tradition continues now also. Most devotees in Kerala recite the Adhyatma Ramayana Kelippattu, composed by Tunjatha Eluthachan, revered as the father of the Malayalam language. Many also follow a traditional schedule of recitation, reading the Bali Vadam chapter on the 15th day, Ravana Nigraham on the 20th day and concluding with Pattabhishekam, the coronation of Lord Rama on the final day of Karkadakam. Another important feature of Ramayana month is the Nalambala Darshan, a pilgrimage to four temples dedicated to Lord Rama and his brothers Lakshmana, Bharata and Shatrughna. The pilgrimage especially popular in Thrissur and Kottayam regions of Kerala and attract thousands of devotees every year. To facilitate the pilgrimage, the Kerala State Road Transport Corporation and private tour operators have arranged special packages enabling devotees to visit all four temples in a single day. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: घने जंगल, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है। अब यह बस्तर जैविक खेती के कारण भी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। पेश है हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
4: बस्तर के कई गांव ऐसे हैं जहां किसानों ने वर्षों से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी खेती पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से होती रही है। अब राज्य सरकार इन गांवों की पहचान कर उन्हें जैविक प्रमाणन दिलाने की दिशा में काम कर रही है। इससे यहां पैदा होने वाले धान, दालों, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस्तर के ऐसे गांवों का सर्वेक्षण कर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ा जाए। जैविक प्रमाणन मिलने के बाद किसानों को अपने उत्पादों का वर्तमान कीमत की तुलना में 3 से 4 गुना तक अधिक मूल्य मिलने की संभावना है। बस्तर के किसानों ने वर्षों से जिस परंपरा को सहज रूप से अपनाया है, वही आज टिकाऊ कृषि का आदर्श बन रही है। यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि बस्तर की प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की भी मजबूत शुरुआत है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: Of course, Karishma, the monsoon season is going on and the arrival of the monsoon is a season of hope and celebration for farming communities across India. In Western Odisha, the first showers bring with them a unique cultural tradition known as Kadu Jatra or the Mud Festival. And this vibrant festival reflects the region's deep connection with agriculture, nature and community life. We have a report on this.
5: Observed during the month of Asadha, soon after the first monsoon rains, Kadu Jatra marks the beginning of a new agricultural season. Before farmers begin sowing their fields, villagers gather in open grounds or muddy fields to celebrate the fertility of the land. Men, women and children joyfully smear mud on one another, sing traditional folk songs and dance to the lively beats of the dhol, nisan, tasa and mohri. The celebration is filled with laughter, music and togetherness, transforming the muddy fields into a vibrant stage of rural festivity. But Kadu Jatra is a traditional expression of gratitude to Mother Earth, whose fertile soil sustains life and livelihoods. The mud symbolizes prosperity, abundance and renewal, while the festival itself reflects the belief that a healthy relationship with nature is essential for a successful harvest. It also strengthens social harmony as people from all sections of the village come together, setting aside differences and celebrating as one community. For generations, Kadu Jatra has been passed down as an important part of the cultural heritage of Western Odisha. Even in an age of rapid modernization, many villages continue to preserve this unique tradition with pride. Kadu Jatra reminds us that no matter how far society progresses, our roots remain connected to the soil. It is a celebration of nature, unity and the timeless bond between people and the land that nourishes them. In every handful of mud lies a story of hope, resilience and gratitude. A story that continues to define the cultural identity of Western Odisha. For Parikrama, this is Supriti Mishra, Akashvani, Sambalpur.
0: और श्रोताओं, बढ़ते आगे बात अब राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 का समापन आज नई दिल्ली में हुआ। इस इवेंट ने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए देश के एक प्रमुख ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर स्थिति को मजबूत किया। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
6: The four-day event aimed to strengthen international partnerships, promote trade and investment, and showcase the entire textile value chain under one platform. Exhibitors, buyers, investors, policymakers, and industry stakeholders from India and abroad participated in the event, reflecting growing global confidence in India's textile sector. It featured over 1,600 exhibitors, over 11,000 buyers, including more than 6,000 international buyers, with participation from 138 countries. The event also facilitated more than 28,000 business-to-business meetings, more than 100 government-to-government and business-to-government interactions, and generated investment commitment worth over 14,300 crore rupees. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber, to factory, to fashion, to foreign Bharat Tech 2026 evolved into a premier platform for business investment, sourcing, innovation, policy, dialogue, and strategic partnership across textile value chain. रोहन फॉर परिक्रमा।
0: और अनुजा अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन के विश्व नंबर 4 चेन युफेई का सामना अब वो करेंगी।
1: एंड इफ वी टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट टुडे, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ओवर 1% हायर टुडे। दैट सेंसेक्स सर्ज्ड 965 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,151। द निफ्टी गेन्ड 262 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,334।

0: And for more updates about the market activities, you can always tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. every evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
0: Yes, Karishma, let's start with paying tribute to an officer of the Indian Air Force, Flying Officer Nirmal Jeet Singh Chekhon. He was posthumously awarded the Paramveer Chakra, which is India's highest military honor, in recognition of his lone defense of Srinagar Air Base against a Pakistan Air Force air raid during the India-Pakistan War of 1971. He is the only member of the Indian Air Force to be honored with the Paramveer Chakra, who holds the unique distinction of being the only officer from the IAF to receive the Paramveer Chakra. And of course, a deep salute to the brave hearts of the defense forces who have been awarded the Paramveer Chakra or any other award or anything, who have been fighting for the nation and are still fighting to keep us safe all the time. Their extraordinary courage and supreme sacrifices in the face of the enemy remain a timeless source of inspiration for the nation.
1: और इसके साथ ही आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी की. उन्हें बांग्ला सिनेमा की पहली सुपरस्टार माना जाता था. कहा जाता है कि बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने अपने अभिनय और गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर भारतीय सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बनाई. कानन देवी ने मुक्ति, विद्यापति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, अभिनेत्री और पराजय जैसे अनेक यादगार फिल्मों में अभिनय किया. उनकी मधुर आवाज और प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया. और इसके साथ ही उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए, जिसमें कानन देवी को वर्ष 1968 में पद्मश्री तथा 1976 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

0: और इसके साथ ही आज भारत के महान गणितज्ञ प्रोफेसर सी एस शेषाद्री की पुण्यतिथि है। वे भारत के विश्वविख्यात गणितज्ञ थे और बीज गणित ज्यामिति के क्षेत्र में उनके शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत सम्मान मिला था। इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा विज्ञान जगत के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था।
1: मूविंग ऑन, वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू मालती घोषाल, हु वॉज अ लेजेंडरी इंडियन रविन्द्र संगीत सिंगर एंड वन ऑफ द एस्टीम्ड पंचकन्या एक्सपोनेंट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर म्यूजिक। शी लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन बंगाली म्यूजिक बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री इन 1952। बिफोर शी बिकेम नोन फॉर एज अ फॉरमोस्ट इंटरप्रेटर ऑफ टैगोर म्यूजिक, घोषाल ट्रेन्ड रिगरसली अंडर सेवरल मास्टरोज इन टप्पा, कीर्तन, क्लासिकल म्यूजिक। शी वॉज ऑल्सो अ प्रोफिशियंट सितार प्लेयर एंड वी विश जरीना वहाब and give her a heartfelt tribute to this veteran Indian actress Zarina Wahab, who is known for her enduring grace, doe-eyed simplicity and remarkable versatility across a career spanning over 5 decades. It's her birthday today. Wishing her a very happy birthday. Known for playing deeply emotional and powerful characters, she remains a revered figure in Indian cinema. And of course, she was trained. She is an alumni of a Film and Television Institute of India and made her cinematic

0: Dramatic debut in Devanand's 1974 musical Ishq Ishq Ishq.
1: ठीक है, अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये देखो, देख, साफ सुथरी रहा कर, हमेशा बाल संवार के रखा कर, चार नाखून काटा कर, पांच खाना खाते हो चुप रहा कर, छह नजरें झुका कर चला कर, सात मुंह फाड़ फाड़ कर मत हंसा कर, और चुप चुप देखो बक बक बक बक। भगवान ऐसी बेटी दुश्मन को भी न दे।
2: लेकिन करने का तो इसके साथ ही अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अनुजा कुमार को। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,200

0: 16 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has launched several developmental projects around 4,700 crore rupees in Chandigarh in key areas healthcare, education and road infrastructure. In a program organized at the Punjab Engineering College, Chandigarh this afternoon, the Prime Minister dedicated to the nation advanced mother and child care centre built at a cost of 505 crore rupees and advanced neurosciences centre built at a cost of 440 crore rupees. He also laid foundation stone of 259-bed critical care block under PM Abhiyam scheme at PGIMER Chandigarh. Mr. Modi also dedicated Zirakpur-Kurali Greenfield Highway to the nation and laid foundation stones for the Zirakpur Bypass and the Chandigarh Airport Aerocity Greenfield Highway. He also inaugurated hostel blocks at Punjab Engineering College and Government College of Sector 46 alongside a new multipurpose auditorium at Punjab University. Addressing a gathering, Prime Minister Modi said, with the development of Chandigarh, people's lives have been transformed, but its benefits extend beyond the city, reaching the people of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh as well.
2: आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है।
1: Prime Minister Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana, marking a major step towards clean and sustainable rail transport. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects. He dedicated the 157-kilometre Delhi-Amritsar-Katra expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours and between Delhi and Amritsar to around 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years and described the hydrogen train as a historic milestone that has given Jind a special place in India's history.
2: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: Ahead of the monsoon session of Parliament, a meeting of group of ministers was held in New Delhi today. Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Rajiv Ranjan Singh, Kinjarapu Ram Mohan Naidu and Kiran Rijiju were present in the meeting. During the meeting, the leaders chalked out the strategy for the upcoming parliamentary session. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from the 19th to the 25th of this month. Briefing media New Delhi Secretary West in the Minister of External Affairs, C.B. George said that these state visits have been undertaken at the invitation of the Presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania.

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
2: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रामवीर जी, आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
3: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था, मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं, तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूं, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे, उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए, तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे, किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजता पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए, वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है, 1 गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी में नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है, सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर

0: उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैटरी है वो। पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए महीना है और पानी बाहर है 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो एक महीना किया, दो महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो, इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गांव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: करी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत। आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: रुपए बता सके कि हमने वहाँ पे किया उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन। है ना, हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
4: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
3: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है, आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाते हैं। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है, भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
4: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
3: देखिए, उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है, वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है। एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके
4: जाए।
3: जी जी। लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे हमने क्या है कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच ट्री गार्ड मेज उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस।
4: अच्छा।
3: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
4: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
3: देखो लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई। पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा। तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
4: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
3: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इशू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाब।

0: से, और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए तालाबों से, बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी ना किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है, हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूं, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहाँ पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते
0: हैं? बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का, हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का वो ये है, क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है, आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था, इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है, वो तो आज भी तालाबों पे उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाए, आप इस साल बनाइए आइलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखे मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकती, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी 1 महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गाँव में, मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11th क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और MNC में जॉब
0: करे। जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये

0: समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था।
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच कि कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहां नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दो।
1: भूमिका तैयार की उसके बाद,
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो, कुछ ही है, घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब कर रहा है,
0: तो छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूं तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ अब इसको, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आज तो तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था, मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो,
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया।
1: हाँ।
0: कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो के मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तो मैं इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा।
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना।
1: अच्छा।
0: मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं, जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ।

0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है क्या? जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है? बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता था छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप US में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
1: अच्छा।
0: तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूं, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूं, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूं स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूं तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो शुरुआत तो घर से होती है, अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पौंडमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और

0: YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा और आप तक पहुंचा रहा हूं कुछ और बेहतरीन नगमे। दोस्तों, हर रोज हम न जाने कितने ही ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिन्हें हम कभी याद भी नहीं करते, ना ही उनके चेहरे हमें याद रह जाते हैं, ना ही उनसे कभी मुलाकात हो पाती है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी बन जाते हैं, उनका हमारे जीवन में इतना खास प्रभाव पड़ता है कि सच कहूँ तो उनके बिना हम रह नहीं पाते।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

अनजाने फिल्म से सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के।

दोस्तों इसी गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: रहा है. इसी सोच के साथ रेलवे ने इस वर्ष 52 सप्ताह 52 सुधार का लक्ष्य तय किया है. इस अभियान को रिफॉर्म एक्सप्रेस नाम दिया गया है. इसके अंतर्गत अब तक 17 सुधार लागू किए जा चुके हैं. इन सुधारों का उद्देश्य माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, निर्माण कार्य, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, वैगन डिजाइन, कौशल विकास और कारोबार को आसान बनाने जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाना है. आज शुरू हुई भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी भी इसी परिवर्तन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. आइए जानते हैं इस रेलगाड़ी की क्या विशेषताएं हैं और हाल के वर्षों में भारतीय रेल में कौन कौन से बड़े सुधार किए गए हैं.
2: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन और विकास पूरी तरह से भारत में किया गया है. इसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO की तकनीकी मंजूरी के अनुसार तैयार किया गया है. ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ये ट्रेन उत्तर रेलवे के जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी. इसमें कुल 10 कोच है और ये 1200 किलोवाट की हाइड्रोजन ईंधन सेल से मिलने वाली बिजली पर चलती है. इसकी अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है. इस ट्रेन में लगभग 2600 यात्री सफर कर सकेंगे. ये जींद, गोहाना और सोनीपत के बीच कई मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी रुकेगी. इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक है. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली तैयार होती है. इस पूरी प्रक्रिया में केवल जल वाष्प और ऊष्मा निकलती है, यानी ये डीजल से चलने वाली ट्रेन के तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ तकनीक है. हाइड्रोजन में ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है. जहां डीजल से 43 मेगाजूल प्रति किलोग्राम ऊर्जा मिलती है, वहीं हाइड्रोजन से लगभग 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है. यही वजह है कि इसे रेल परिवहन के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन विकल्पों में से एक माना जा रहा है. हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल में हो रहे बदलाव की केवल एक कड़ी है. रेलवे इस वर्ष रिफॉर्म एक्सप्रेस अभियान के तहत 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. अब तक 17 बड़े सुधार लागू किए जा चुके हैं. इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. इन सुधारों के तहत माल ढुलाई व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं. फ्लाई ऐश, उर्वरक, खाद्यान्न, दाल, आटा और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. कई वस्तुओं के लिए कंटेनर आधारित परिवहन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सामान को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके और लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो. रेलवे ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए पूरे देश में एक समान लाइसेंस व्यवस्था भी लागू की है. इससे कारोबार करना आसान होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा. यात्रियों की सुविधा के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं. टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. जल्द ही यात्री ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे. इसके अलावा ऑन बोर्ड सफाई, गति शक्ति, कार्गो टर्मिनलों का विस्तार, रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के डिजिटलीकरण जैसे सुधार भी लागू किए गए हैं.
1: श्रोताओं, भारत की

0: हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी को केवल एक नई रेल सेवा के रूप में देखा नहीं जा रहा, इसे स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत और भारतीय रेल के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी माना जा रहा है।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
2: जल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: वैश्विक केंद्र बनाना है. इसके माध्यम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दुनिया के ऊर्जा परिवर्तन में भी बड़ी भूमिका निभाना चाहता है. इस मिशन के लिए 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए. इसके साथ 125 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाए और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाए. मिशन के तहत देश में बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जा रहे हैं. शुरुआती चरण में कम से कम 2 हब बनाने की योजना है. इनके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं. इनमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, समयबद्ध कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं. मिशन के तहत हाइड्रोजन के भंडारण, पाइपलाइन, टैंकर और वितरण नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जा रहा है. साथ ही नए मानक तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये तकनीक सुरक्षित और वैश्विक स्तर के अनुरूप हो. अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप यानी शिप के तहत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं. इसके साथ ही कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में 4 प्रायोगिक परियोजनाएं, परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन वाहन और रिफ्यूलिंग स्टेशन की एक पायलट परियोजना और तुतिकोरिन बंदरगाह पर हाइड्रोजन बंकरिंग और रिफ्यूलिंग सुविधा की परियोजना भी शुरू की गई है. शोध और विकास के लिए 23 परियोजनाएं, परीक्षण सुविधाओं के लिए 5 परियोजनाएं और 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर भी स्वीकृत किए गए हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
2: श्रोताओं, भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 51.5% हिस्सा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है. खास बात यह है कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2030 के लिए निर्धारित इस लक्ष्य को 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया. विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ परिवहन जैसी पहलों पर लगातार काम कर रही है. देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन रेलगाड़ी भी इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है. आज के विश्लेषण में बस इतना ही.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर बढ़ते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया। वहीं दूसरी तरफ सनफार्मा में 0.9%, कैंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid small private quality tilt index and BankEx rose by 1.6% and Realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods dipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर 96.28 पर बंद हुआ। एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर

0: है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है, और तीसरा हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, वहाँ पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया। लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा कॉरपोरेट रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है।
1: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट निफ्टी बैंक वेंट अप बाय 1%, एंड यू मेंशनड अबाउट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आर नाउ आउट एंड वी कैन सी अबाउट 4 बैंक्स हैव डिक्लेयर्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल। व्हाट हैज बीन द रीजन बिहाइंड banking performance at the fundamental level for our economy?
0: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly because with the support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year, because we are moving ahead. We are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. Otherwise, many, many countries are facing such kind of problems like the banking stress. But in India, our banking system remains very, very strong at every crisis, whether the coronavirus or the before that Lehman crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
1: So there's no liquidity issue basically as far as banking
0: I don't
1: is
0: see
1: concerned.
0: Any liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
1: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
0: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they will not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results, and that is in front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
2: SP, अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें, वापस मार्केट की हम बात करते हैं, तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, तो जिसमें FIS और DIS की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि यहाँ दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है, और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर ये कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं।
0: देखिए, इसमें ऐसा है, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो FII और DIA का इंडिया में जो रुख है, वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है, खास करके FII काफ़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है, देन दे पुल देयर मनी, एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव

0: then they put a significant money in the market. तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक balanced रहता है. एक fluctuation बहुत होती है, लेकिन overall अगर हम देखेंगे तो on an average
1: balancing.
0: They are investing in the market.
1: Balancing?
0: Balancing. They are investing in the market. Hmm. They are the great investors. Though our markets are supported by the retailers, अभी तो हमारे ऊपर FII का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा retail segment ही बहुत तेज गति से support करता है. जो हमारे retail transactions हैं वो ही बहुत अच्छे significant level पे हैं. और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो small caps and mid caps, actual में जब एक market में churning होती रहती है, कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन सम देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है.
1: ओके,
0: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूं. लेकिन ओवरऑल जैसे FII और DIs का मैंने बताया, इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है. जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखेंगे, दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म कैप मीडियम टू लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एक्चुअली, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. दे आर समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप्स एंड समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द स्मॉल एंड मिड कैप्स.
2: स्पीकिंग ऑफ ब्लू चिप्स एंड selective stocks, you've seen that index heavyweights, as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights, a company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9-12% on the Sensex, went up by 2%, and as a result we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
0: Prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive, and we have great possibilities to expand the businesses in this segment, and that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10-15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
1: और आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है. ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया. वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे. प्रमुख यूरोपीय बाजारों की हम बात करें तो वहां नकारात्मक रुख देखा जा रहा था. ताजा जानकारी के अनुसार फ्रांस का कैक 40 0.8%, जर्मनी का डेक्स 0.7% और लंदन का फुटसी 100 0.2% नीचे आ गया. एसपी, अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमी कंडक्टर शेयरों का यहाँ पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है. तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है?
0: देखिए, जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में, और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे, डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है. अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं. जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफ़ी संभावनाएँ जो है वो धुंधली नज़र आ रही हैं. उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है. लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है. जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात उस युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही हैं. जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट से एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगी, कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे, तो उनका एक सस्टेंड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है।
1: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है, तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही, भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा, क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफ़ी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं, पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए, जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं। और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इम्पैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन द हाई डबल डिजिट्स, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज लेस देन 4%, इंडिया इज 6.5-6.6%, आप अंतर देखिए कितना है। तो चाइना का स्टोरी काफ़ी डिमिनिश हो रहा है, और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इम्पैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इम्पैक्ट होते हैं।
2: Let's move on to the US stock market. Wall Street ended on a negative note yesterday, dragged down by a decline in chip stocks. Among the major indices, Nasdaq Composite shed 1.5%, S&P 500 dropped 0.5%, and the Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. On the economic front, weekly jobless claims fell by 8,000 last week to 208,000, according to data released by the Labor Department. Dr. Sharma, we are seeing that in the spot market in the US, there has been a fall in valuation. Chip stocks have taken a hit. There's been a global sell-off, including the Asian markets that we were talking about earlier. NASDAQ futures is also showing a drop in terms of future valuation. And all of this is foundational on the attacks. Again, US attacks on Iran. Iran is then expanding its attacks to Syria and Bahrain, where the US military bases are. How do you see the U.S. economy also in terms of its inflation numbers?
0: Yes, Arjun, because this is majorly because of West Asia intensification. Otherwise, U.S. economy is recovering a little bit, like inflation. Inflation has decelerated from more than 4% to at 3.5%, better than the expectations. Expectations was 3.8%. And now there is a great room for Fed to remain stable, not to increase the Fed rate in the coming policy review of 29th of July or 30th July. So that is the positive news for the US economy. But still, the negative news from the West Asia are impacting the sentiments of the stock market, and markets are fluctuating. So I believe this war will impact the US economy significantly in the coming times, as the peace process is not retained in the coming times.
2: You're also seeing in the US economy that IT companies are facing labor union issues because of such heavy investment in artificial intelligence and data centers, and a lot of highly skilled IT workers are being laid off, not because of concerns about the company moving forward, but just so that profit margins go up. How do you see this in the US economy right now?
0: Yes, Arjun, because many emerging countries are very competitive in the IT development, like India. So those companies are facing such global competitiveness and not able to grow in the great numbers, competitive numbers. That's why and along with the investments in AI, that is sentimental, that AI will impact the IT. That is the normal phenomenon.
2: And it's also being seen as circular.
0: Yes, yes. So that's why they are feeling such kind of headwinds.
2: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
1: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर हैं कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है।
0: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है और अभी ये हमने न्यूज़ देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफ़ी वीक से इनमें बढ़ोतरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है।
1: Right.
2: Moving on to more news. The Office of Economic Advisor, OEA, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade will release the revised series of the Index of Core Industries, ICI, with a base year of 2022-23 on the 20th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the revised series will replace existing ICI series with a base year of 2011-12. The ministry said that iron ore has been included as a core industry in the revised ICI series, citing its extensive use in industrial production and a significant contribution to industrial development. With this addition, the number of core industries has increased from 8 to 9. Now, how do you see the inclusion of iron ore really redefining how we look at core industry data and, for that matter, factory output?
0: Yes, Arjun, these are very strong developments. We also revised our base year for the GDP, for the inflation, WPI, CPI. And recently, government has started a new thing for the services index. That will indicate the growth story of the services, because we are services dominating economy. So now this ICI is also very important because core infra is also backbone of our industrial development. But the base was very old actually, 11-12. Now the recent base, 22-23, will make a great sense and provide the real picture of our core sector development.
2: In more news, Gujarat has emerged as a top performer among Indian states and union territories in the Investment Friendliness Index 2026. It is followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Goa and Odisha as the top performers. Niti Aayog today released the Investment Friendliness Index 2026 in New Delhi, outlining the states that are best placed to attract investment as India pushes toward the goal of Viksit Bharat by 2047. Niti Aayog said that Gujarat's strong port operations and power sector, Maharashtra's ability to attract private equity and venture capital, and Tamil Nadu's infrastructure and export performance have contributed to their high rankings. CEO of Niti Aayog, Nidhi Chibbar, said that the index is not intended to be merely a ranking exercise. Rather, it is designed as a practical reform tool. She said that the index enables states to benchmark their performance, identify priority areas for improvement, and learn from one another's best practices. So tell us about this friendliness index, and once again, Gujarat as a top performer.
0: Yes, Arjun, because Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, these are industrial states actually, and performing very well, not only the manufacturing, but in the exports also. Gujarat, Maharashtra, they have a great share of in our overall exports.
2: Also, land banks
0: is there. So that's why these states are performing well for the investment attraction and becoming more and more robust. And also, along with ease of doing business, they are also the best performers in the ease of doing business trajectory as compared with many other states.
2: In more news, the Employees Provident Fund Organization, EPFO, has launched the Vishwas 2026 to facilitate amicable settlement of disputes relating to levy of damages and penalty-related disputes. The Labour and Employment Ministry said that the scheme is a one-time dispute resolution and provides employers with an opportunity to settle eligible cases through a transparent, fully digital and time-bound process. It will remain operational for a period of 6 months from the date of notification. The Ministry said that it has been introduced with the objective of promoting voluntary compliance, reducing litigation and enabling speedy resolution of long-pending disputes relating to penalty and damages while safeguarding the interests of employees. Now let's move on.

0: to the crude oil market. Global crude oil prices climbed today as escalating attacks between the U.S. and Iran heightened tensions across the Gulf. Brent crude was trading 2.1% up at $86.02 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% higher at $81.02 per barrel when reports last came in. How concerned, Dr. Sharma, are you with these developments? A 60-day ceasefire, which really led to a great deal of investor sentiment all across the globe, is now being damaged in a significant way because not only oil and gas prices are likely to go up, but really business costs are likely to be go up as well, and travel and tourism is going to be hit in a big way.
1: Yes, Arjun, this is I think very unfortunate for the global economy that peace was in process and then suddenly they are again intensifying the war in West Asia, which is impacting the crude significantly. Now 85, 86 is not a favorable number because we were anticipating that crude will now fall to 70, somewhere between 70 to 75 and stable there. But now again, this will be a great challenge for the global inflation trajectory, and not only the inflation numbers, but also impact the many segments of the economy, because economic activity is greatly supported by the energy, like the crude oil prices.
0: Agriculture also, because sulfur,
1: yes, agriculture
0: for
1: inputs
0: fertilizers
1: are also increase and impact the production cost of the farmers.
2: तो इसमें एसपी ये भी ही तो है कि वैश्विक मांग और आपूर्ति को लेकर के संतुलन बनाना आजकल पूरे विश्व के लिए बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे उन देशों के लिए तो भी ज्यादा ये मुश्किल हो रहा है जो तेल का निर्यात करते हैं.
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया. जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा पीस प्रोसेस हो, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ट्रंप साहब से आए कि जिससे वो फिर बातचीत करने की बात में ईरान को बोले और दोनों एक टेबल पर आए और कुछ फाइनल हो. बट इस जंक्चर पे जो सिचुएशन है, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,41,170 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,15,740 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.2% upar aakar 1,46,576 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 0.4% niche aakar 2,15,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीजों का, खासतौर पर अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके हम इसमें चल सकते हैं मार्केट के बजाय.
1: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक स्टेबल कॉमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा. अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज़्यादा हर रोज़ अनाउंसमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीज़ों में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स.
2: एसपी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी शुक्रिया, थैंक यू.
0: And now our closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई

0: विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री का पंजाब हरियाणा

0: हरियाणा चंडीगढ़ का दौरा और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: संजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: संजीव जी। सबसे पहले तो आज के घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो एक ही दिन में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में करीब 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ होने का कार्यक्रम रहा है, तो इसे आप सिर्फ विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं या आप इसके पीछे सरकार की एक ऐसी सोच देखते हैं जहां पर पूरे देश में लगातार विकास को और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि इस सरकार की प्लान यही रही है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो विकसित भारत के लिए हर कोना भारत का जो है वो विकसित होना चाहिए। तो और इस फील्ड में, इसी श्रृंखला में ये जो आज के प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये प्रधानमंत्री ने कुछ इनॉग्रेट किए हैं, कुछ का फाउंडेशन स्टोन ले किया है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। अब आप नॉर्थ में अगर देखें तो दिल्ली से ऊपर नॉर्थ में चंडीगढ़ एक मेजर सेंटर है जो नॉर्थ पूरे को केटर करता है, जो स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग वहां आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी खुद में है। तो दिल्ली के नॉर्थ में एक मेजर सेंटर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में भी करीबन 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इसके अलावा पंजाब में करीबन 5200-5400 करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवेज के हैं, और हरियाणा में करीबन 14,500-15,000 करोड़ के, तो टोटल में 25,000-26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस एरिए की अगर आप सिग्निफिकेंस समझें, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा भी साथ लगता है, तो एक पहले बॉर्डर स्टेट ही था पूरा, पंजाब एक ही था जी। तो इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाब में बहुत अरसे तक, दो दशक पहले आतंकवाद भी रहा और उससे जूझता रहा, तो डेवलपमेंट कहीं पीछे चली गई। तो उसको पेस अप करने के लिए, और जैसे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ईज ऑफ लिविंग के लिए भी ये जरूरी हैं। और दूसरी बात, एक आज जो सबसे सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी कि कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन।
1: मैं बिल्कुल इसी पर आने वाला था, मैं आपसे पूछने वाला था कि आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो रेलवे के इतिहास में अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की भविष्य की दिशा है, उसमें बदलाव होना है, और भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें परिचालन की स्थिति में है, लगातार उन पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हम लगातार इसको बढ़ावा देते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो हमारे आधारभूत ढांचे और जो हमारी रेलवे की व्यवस्था, उसे कैसे आकार देंगे?
2: जी बिल्कुल, इंडियन रेलवेज जो पहले से बहुत आधुनिक हो चुका है, हर रोज नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस, एडिंग न्यू लाइंस, नई परियोजनाएं, और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए पूरा एफर्ट किया जा रहा है। तो आज की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब उन देशों में आ गया है जिनके पास बहुत कम टेक्नोलॉजी है। एक तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन प्रोपेल्ड जो इसके इंजन है, बेसिकली आप वाटर वेपर्स बाहर छोड़ता है, तो देयर इज जीरो पोल्यूशन। सो जो एमिशन गैसेस जो पहले हैं, पहले आप देखोगे तो पहले स्टीम इंजन यूज हुआ करते थे, तो कोयला यूज होता था तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन आई तो ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे ट्रैक्स की हो चुकी है आज की डेट में। लेकिन एनर्जी सिचुएशन को भी देखते हुए बहुत जरूरी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना। सो हाइड्रोजन ट्रेन इसी श्रृंखला में एक मॉडल है जिसमें आप हाइड्रोजन सेल प्रोपेल्ड इंजन लगाएंगे, जिससे एक तो पोल्यूशन नहीं होगी और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो एनर्जी प्रेशियस है, एनर्जी और चीजों में लगानी है, तो ट्रेन चलाने की जगह हाइड्रोजन यूज करेंगे। और आपको बता दूं कि भारत अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ US, चाइना, फ्रांस और जर्मनी और जापान के पास है, और अब इंडिया के पास भी है
1: जी।
2: और ये जो इंजन है 1300 हॉर्स पावर का इंजन, मतलब वर्ल्ड का माना जा रहा है कि सबसे पावरफुल इंजन है इसके। ट्रेन में 10 डब्बे हैं और करीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है जींद और सोनीपत के बीच में। और ये भी हेरिटेज, जैसे हरियाणा को माना जा रहा है कि बड़ा हमारी हेरिटेज से जुड़ा हुआ है, वह महाभारत हुई तो हेरिटेज के साथ हरियाणा को जोड़ते हैं, तो ये हेरिटेज सिटीज हैं एक तरह से दोनों को जो जोड़ रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कि उनके क्या विचार हैं।
3: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ भी जाता है कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर के हमारी जो सोच है, जो गोल हमने डिसाइड करके रखे हैं, उस दिशा में भी भारत लगातार बढ़ रहा है। अब उसमें ये बड़ा कदम होगा।
2: जी बिल्कुल, कार्बन एमिशंस तो खत्म ही हो जाएंगी, ओवर गैसियस एमिशंस जितनी भी हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि ये सिर्फ हवा में हाइड्रोजन यूज कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना रहा है, वाटर वेपर छोड़ रहा है। और ट्रेन की ऐसा नहीं कि तेज नहीं चलेगी, 75 किलोमीटर की मैक्सिमम लिमिट है इस ट्रेन की। इसको जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको आगे भी और एक्सटेंड करेंगे, ये फर्स्ट ट्रेन है लेकिन इसको और ट्रेन भी इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रैक को भी एक्सपेंड करेंगे।
1: वैसे विकास की कई योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, जिसका इंतजार एक लंबे समय से देश में किया जा रहा था, इसे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिससे कि यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि देश में एक्सप्रेस वे का एक तरह से पूरा एक तंत्र बनता जा रहा है, पूरे देश को ऐसे कनेक्ट किया जाए कि यात्रा आसान हो और जो हमारी लॉजिस्टिक व्यवस्था है उस पर भी काफी पॉजिटिव असर पड़े। आपको क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, आज की डेट में करीबन 6-8 लाख करोड़ का, ये थर्ड मोदी गवर्नमेंट में इतने लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेजर फोकस है और जितनी एक्सप्रेसवेज बन रही हैं इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, सिर्फ ना सिर्फ लोगों का आवाजाही में समय बच रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें भी कॉस्ट की कमी हो रही है। जैसे टोल ब्रिजेस को भी ऑटोमेटिक किया जा रहा है, आपको रुकना ना पड़े, समय कम लगे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में, मैन वेस्टेज ना हो। तो ये सब करते कराते अब जैसे देहरादून की अभी एक्सप्रेसवे जब कुछ महीने पहले इनॉग्रेट हुई है, वहां देहरादून पहुंचने में दिल्ली से 5-6 घंटे लगते थे, आज की डेट में 2-2.5 घंटे में बंदा पहुंच रहा है। सिमिलरली साउथ में या पूरे इंडिया में इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फोकस मेजर दिया जा रहा है। और ये दिल्ली से कटरा एक मेजर, माता वैष्णो देवी है वहाँ और बहुत लोग वहाँ आस्था की वजह से भी जाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है अमृतसर को जोड़ते हुए, पूरे पंजाब को, हरियाणा को जोड़ते हुए, इनसे इससे कॉस्ट बहुत कम होगी और ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी।
1: पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं।
2: जी अब मेजर पुश दिया जा रहा है कि बॉर्डर स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करनी है। जैसे आज एक कबीर ट्रेन का नाम है संत कबीर के नाम पे, छियाटा से लेकर वाराणसी तक। अब छियाटा गुरु रविदास जी के साथ माना जाता है, लेकिन छियाटा है कहाँ? ऑलमोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के वाघा बॉर्डर से थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेशन है अटारी वाघा है, लेकिन उससे पहले वाला स्टेशन जो है वो छियाटा है, बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है अमृतसर से भी आगे। तो वहां से ट्रेन जुड़ रही है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ गए आप। तो आप ये देखिए कि कितने डेवलपमेंट को पुश दिया जा रहा है बॉर्डर स्टेट में, कि वहां कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, उससे डेवलपमेंट भी होगा और विकसित भारत तभी हो सकेगा जब सारे स्टेट्स डेवलप।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जैसे कि कई सारी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हाईवे परियोजनाएं पर भी काम हो रहा है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अब सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि सड़क निर्माण की जो कनेक्टिविटी उसके साथ साथ औद्योगिक विकास भी हो, लॉजिस्टिक्स के लिए भी अच्छी सुविधाएं हमें मिल सके, कृषि और रोजगार को भी बढ़ावा मिले। ऐसे में हरियाणा में जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, अस्पतालों का लोकार्पण किया गया, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां पर कि डॉक्टरों की उपलब्धता हो, मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का काफी ध्यान रहता है।
2: जी बिल्कुल, और अगर आप देखा जाए तो भिवानी बिल्कुल सेंटर ऑफ हरियाणा में पड़ता है और एक तरफ नारनौल, तो एक मेडिकल कॉलेज भिवानी में है, एक नारनौल में है, साथ में एक हॉस्पिटल भी है नारनौल में। तो आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी यहां से दिल्ली से बाहर जाएं तो रोहतक में अच्छा मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ एक अच्छा हॉस्पिटल है पीजीआई रोहतक में। तो हरियाणा में ये बढ़ावा, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो हिसार में भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, तो एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में ये बहुत एक अहम स्टेप है कि रूरल बैकग्राउंड से लोगों को चिकित्सा पहुंचे, हेल्थ चिकित्सा पहुंचे, अच्छी चिकित्सा मिले उनको, ताकि उनको दूर स्टेशन में ना जाना पड़े। तो और चंडीगढ़ में भी, जैसे चंडीगढ़ एक मेजर सेंटर माना जा रहा है, तो आज जो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किए हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें पीजीआई में एजुकेशन और हेल्थ केयर में दोनों में है,
1: मदर एंड चाइल्ड सेंटर। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
3: आज यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है, यहाँ एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट्स लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा

0: सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था, तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है।
1: संजीव जी, आपको ये लगता है कि भारत अब स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व स्तरीय तरीके से ध्यान दे रहा है, ऐसे संस्थान तैयार कर रहा है जहां पर किफायती दाम पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और आयुष्मान योजना का भी इसमें बड़ा रोल रहा है?
2: जी बिल्कुल, आप अगर पहले देखे हैं तो भारत में एक एम्स थी दिल्ली में, आहिस्ता पूरी विजन से चले हैं कि एम्स पूरे कंट्री में उस एक नेटवर्क बनता जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो अगर एम्स जैसे सेंटर्स पूरे देश में बनेंगे तो उससे सारे कॉर्नर्स में पहले हर आदमी जिसको क्रिटिकल केयर चाहिए होती थी वो एम्स में दिल्ली में आते थे, आज की डेट में वो उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पे भी बर्डन बढ़ता रहता था, तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब कहीं हर स्टेट में बनता जा रहा है, हर रीजनल सेंटर में एक एम्स सेंटर बनता जा रहा है। सिमिलरली एजुकेशन हब्स भी बनते जा रहे हैं, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई थी पहले पुरानी सरकारों में, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पंजाब में लॉन्च करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी सरकारें जो ब्रिटिश टाइम के रेलवे स्टेशन बने हुए थे वो वैसे के वैसे ही थे, कहीं उनको ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे। तो ये बहुत जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेलवेज का नेटवर्क पूरा डेवलप करना, रेल ट्रैक्स नए करने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अनाउंसमेंट्स हो जाया करती थी, हमने भी सुना है कि पहले रेल मंत्री जब बजट प्रेजेंट किया करते थे, रेल बजट अलग होता था, तो लोग देखते थे सुनते थे पार्लियामेंट में कि नई ट्रेन, इतनी सारी नई ट्रेन लगा दी, लेकिन वो इंप्लीमेंट होता ही नहीं था, कितने कितने दशक लग जाते थे उनको इंप्लीमेंट करते वक्त। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं और ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, आम नागरिक की को अच्छी लाइफ जी सके। और जो ये हाइड्रोजन ट्रेन का जो एग्जाम्पल था वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मतलब जा रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, और वो मेक इन इंडिया का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर जैसे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है तो ये सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल
2: भारत को आगे बढ़ने के लिए।
1: आपको क्या लगता है कि विकास की यात्रा में भारत आज कहां पर खड़ा है?
2: नहीं बिल्कुल, भारत अब बहुत तेज रफ्तार से आगे चल रहा है, जो पहले रफ्तार बहुत धीमी थी अब भारत ने वो रफ्तार पकड़ ली है और बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो लक्ष्य है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने में ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं।
1: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम हाइड्रोजन के लिए लगातार काम करते रहेंगे और हाइड्रोजन हब बनाएंगे ताकि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और देश का पैसा है वो देश में ही रहे और विकास के काम आए।
2: जी बिल्कुल, पहले इक्विपमेंट मॉडर्नाइज करने के लिए इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया जाता था
1: जी।
2: अब मोस्टली क्रिटिकल पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, भारत में ही क्रिटिकल पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन में भी अभी लास्ट कैबिनेट में मंजूरी दी गई सेमीकंडक्टर 2 मिशन, सिमिलरली मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में नई स्कीम लाई। तो ये सब एफर्ट्स जो हैं भारत को विकसित बनाने की श्रृंखला में एक मेजर माइलस्टोन्स हैं। भारत मतलब मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में बहुत आगे जा चुका है और आगे चलते वक्त और आगे जाएगा। विकसित देशों के बीच में आज की डेट में हाइड्रोजन ट्रेन का आपने एग्जांपल दिया, बाकी सब देश हैं वो विकसित देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन सेल्फ प्रोपेल्ड इंजिन बनाए हैं। तो भारत उन देशों की श्रृंखला में जुड़ता जा रहा है जो विकसित देश है, और यही एक पॉजिटिव फैक्टर है कि भारत जल्द ही विकसित होने जा रहा है।
1: संजीव जी, इस चर्चा में आपने भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का दौरा और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर इस समय यानी शाम का वक्त हुआ है और वक्त हुआ है हमारी घड़ी में 7:26:06। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड 100.1 पर मैं संजीव लेकर के हाजिर हूँ महफिल जिसका नाम है सांझ ढले।

जी हाँ दोस्तों, हम लोग किसी न किसी का किसी न किसी वक्त इंतज़ार ज़रूर कर रहे होते हैं। कुछ जब आप घर जाने को होते हैं तो घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और आप हो सकता है कि इस वक्त अपने काम पे भी जा रहे हो तो आप अपने काम पे जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ का एक हम लोग कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हैं। बहुत से इंतज़ार की घड़ियाँ जो होती हैं वो सुखद होती हैं, और ऐसी ही एक इंतज़ार की घड़ी जो हम लोग बरसों से कर रहे थे वो आज एक सुखद अनुभूति में तब्दील हो चुकी है। जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। पूर्णतः स्वदेशी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित, जिसमें हाइड्रोजन और हवा से प्राप्त ऑक्सीजन से बनी बिजली से ट्रेन चलती है और केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है। यानी हम तकनीक की दुनिया में कितना आगे बढ़ गए हैं, और साथ ही साथ जो विकसित भारत की कल्पना की जा रही है उसमें हम एक मील का पत्थर साबित हुए हैं आज इस ट्रेन के चलने से। जींद और सोनीपत के बीच के लोगों का ये सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है, और आप इस ट्रेन में कभी वक्त लगे, मौका लगे, ज़रूर बैठ कर देखिए और इसका अनुभव कीजिएगा।

0: पर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर वक्त हो रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है प्रोग्राम समाप्ति की ओर। 7:39:54, मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। महफिल सजी हुई है, सांझ ढलेगी।

सागर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत के साथ ही सांझल की महफिल हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू और भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में सम्पन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत

0: की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय लगभग 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शकुरपुर से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र राजधानी के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान में दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर संचालित हैं, जो नागरिकों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों में नागरिकों को सामान्य ओपीडी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जाँच, आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य परामर्श और लगभग 80 प्रकार की निःशुल्क जाँच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है।
4: आज ये इतनी बड़ी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपकी मेहनत की ही देन है, जो हाँ जिसका फायदा इस क्षेत्र की जनता उठाए। हर तरह के टेस्टिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है।
3: श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही 1,100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी। उन्होंने नागरिकों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित जीवन शैली अपनाने और योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नेताजी सुभाष प्लेस क्षेत्र में 5 सड़कों और एक नाले का पुनर्निर्माण शामिल है। 6,25,00,000 रुपए की लागत से विकसित 8 प्रमुख सड़कों लॉरेंस रोड, महर्षि परशुराम मार्ग, परवाना रोड, जी और एच शकुरपुर रोड, एकलव्य मार्ग, तिरुवरलू वरमार्ग और वीर हेमु समेत अन्य मार्गों का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिनगर विधानसभा वर्षों तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझती रही, लेकिन अब इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रभावी किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न जिलों और उपखंडों में फैले लगभग 400 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित किसानों तक सीधे अनुग्रह राशि पहुंचेगी। यह राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा है योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो उस भूमि के पंजीकृत मालिक हैं और जिनकी फसल पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर की तेज बारिश और जलभराव के कारण खराब हुई थी। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज छतरपुर स्थित डेरा मंडी रोड का दौरा कर क्षेत्र में जलभराव, सीवर और सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद श्री सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग डेरा मंडी रोड से डेरा भाटी रोड होते हुए बांध रोड तक नया प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन बनाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था विकसित करना और भविष्य में जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि जखीरा में बन रहे प्रतिदिन 56 लाख लीटर जल क्षमता वाले भूमिगत जलाशय के निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सज्जन सिंह यादव ने आज निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। परियोजना के पूरा होने के बाद नेहरू नगर, आनंद पर्वत और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली रिज के पीबीजी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। ये पौधारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित अभियान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित है। श्री सिरसा ने लोगों से पेड़ों को बचाने की अपील की।
1: आज दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़ी प्लांटेशन ड्राइव यहां पर चलाई गई। दिल्ली के हर कोने में पेड़ लगें, इसके लिए दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। देश के गृह मंत्री जी ने पहला पेड़ लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की और अब लाखों पेड़ दिल्ली के अंदर लगाए जा रहे हैं। सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिलकर पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ हमारा टारगेट है। सभी डिपार्टमेंट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए सब लोग मिलकर इस काम मुहिम को कर रहे हैं।
0: न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन पर एक उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को नागरिकों के लिए परिचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने बताया कि इस चार्जिंग स्टेशन में 14 डीसी चार्जिंग प्वाइंट प्रदान किए गए हैं। उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन का पता लगाने के साथ साथ चार्जिंग सुविधा का सुगम उपयोग कर सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। आदेश में दिल्ली के वर्तमान पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को अनुराग कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आगे की तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही के नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। दमन और राष्ट्रीय राजधानी के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भारत का प्रतिबिंब है जहां देश के प्रत्येक राज्य के लोग निवास करते हैं। श्रीमती गुप्ता ने आज फेथ पर्यटन सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में केवल देश के विभिन्न राज्यों के लोग ही नहीं रहते बल्कि उनकी परंपराएं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी जीवंत रूप से संरक्षित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को विश्व स्तरीय पर्यटन हब बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
2: दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन है। इस विचार पे भी बहुत काम करने की जरूरत थी, हमने इस पे काम करना शुरू। दिल्ली एक तरीके से मिनी इंडिया है, भारत का वो छोटा स्वरूप जहाँ हर राज्य के लोग रहते और केवल राज्य के लोग नहीं रहते, उनसे जुड़ी हुई सारी परंपराएं, वो उनका बहुत ही सुंदर कल्चर यहाँ रहता है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु दिवस भारत की सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का उत्सव है। तमिलनाडु दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास में राज्य के योगदान की सराहना की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और तमिलनाडु के बीच आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में आयोजित होने वाले पोंगल, भरतनाट्यम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि तमिल उत्सवों, पर्वों और कर्नाटक संगीत जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से नई पीढ़ी गौरवशाली तमिल संस्कृति से जुड़ रही है। कार्यक्रम में कलाकारों ने भरतनाट्यम, कराकट्टम, कावड़ी अट्टम और कारागम लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। भारत और विदेश से प्रदर्शकों, खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह भारत के वस्त्र क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इसमें 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों, 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों सहित 11000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी रही और आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू और भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है।
5: साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहाँ जालंधर से कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा।
4: श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे

0: स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जलंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नई दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees from Jalandhar. These projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. Soon after reaching Jalandhar from Chandigarh, Mr. Modi inaugurated 75 redeveloped stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. He inaugurated redeveloped railway stations across 20 states virtually, which include SAS Nagar Mohali Railway Station, Sri Muktasar Sahib Railway Station and Sri Anandpur Sahib Railway Station. The transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने

किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों की महफिल हम आपके समक्ष लेकर के हाजिर हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर। समय हुआ है 8:11:07।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना है फिल्म उड़न खटोला का ये गीत, जो फिल्म आई थी 1955 में। आज हम इस प्रोग्राम में जो बात करेंगे वो राग बिहाग की बात करेंगे। राग बिहाग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और लोकप्रिय राग इसको कहा जाता है। ये बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ है, अपने श्रृंगार रस प्रधान प्रकृति के लिए जाना जाता है।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

राग विहाग की हम बात कर रहे हैं। इसे रात के दूसरे प्रहर रात 9 बजे से 12 बजे तक में गाए जाने का प्रचलन है। राग विहाग का जो थाट है वो बिलावल है, जिसकी जाति और संपूर्ण है। आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगाए जाते हैं। वादी स्वर इसका गंधार गा है और संवादी स्वर निषाद नी है।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

फिल्म आपकी कसम से ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही हमारी आज की ये महफिल यहीं समाप्त होती है। अगले किसी शो में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। आप संजीव को दीजिए फिलहाल इजाज़त। सुनते रहिए AIRFM गोल्ड 100.1।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने आगामी हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी। हंसिका लांबा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। नेहा और मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में युवाओं को हर सुविधा प्रदान करेगी।

0: इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और फिबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होना था, लेकिन वह चोट के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सकी। ये इस सीजन में सिंधु का तीसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले वे मलेशिया सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ही 2023 डेनमार्क ओपन के बाद ये उनका पहला सुपर 750 सेमीफाइनल है। 31 वर्षीय खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें इस सीजन का पहला खिताब जीतने पर होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और विश्व की चौथी नंबर खिलाड़ी चीन की चेन युफई से होगा। सिंधु और चेन युफई के बीच अब तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु उनसे 6-8 से पीछे हैं। सिंधु को युफई के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में जीत न केवल सिंधु के हारने के इस सिलसिले को खत्म करेगी, बल्कि लगभग 3 साल में उनके पहले सुपर 750 फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ होगा। अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर ही टिकी होंगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिंधु अब भारत की एकमात्र दावेदार हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु 6-8 से पीछे हैं, लेकिन कल भारतीय प्रशंसकों की निगाहें सिंधु के अच्छे खेल प्रदर्शन पर होंगी और उम्मीद करें कि वो फाइनल का टिकट अपना पक्का कर लें। और अब बात करते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
2: बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही इस महिला टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा खिलाड़ियों का संगम है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सभी को प्रभावित किया है। खासकर पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था और भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब पर कब्जा जमाया था। विश्व कप के लिए टीम में सविता और बिचू देवी खारीबम को गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि डिफेंस यूनिट में इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंत ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग को रखा गया है। वहीं फॉरवर्ड लाइन में लाल रेमसियामी, ऋतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह दी गई है। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर कोच मारिजाने ने कहा कि हमने खिलाड़ियों का एक संतुलित ग्रुप चुना है। टीम ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें इस ग्रुप की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने और सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय कोच ने कहा कि ये विश्व कप आगामी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।
3: I take it as a preparation and take as said we are going to the World Cup to perform and the performance will help us to be at our best at the Asian Games because at the end we will want to win the Asian Games for the qualification. So it's not just one, the World Cup will, the information from the World Cup will help us in at the Asian Games, but yeah, performing at both would be great.
2: भारतीय टीम को चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल डी में रखा गया है। टीम अपने सभी पूल स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में दमदार प्रदर्शन किया था और भारतीय प्रशंसकों को अब उम्मीद होगी कि भारत इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आगामी टूर्नामेंट्स में भी उनकी मजबूत दावेदारी पेश होते रहे। अब सीधे चलते हैं बॉक्सिंग कुश्ती रिंग की ओर। बुडापेस्ट में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा ने पोलियाक इमरे, वर्गा जानूस और कोजमा इस्तवान

0: करना पड़ा। हंसिका लांबा ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की की तूबा डेमिर को 8-4 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की और फिर सेमीफाइनल में पिछड़ने के बाद जर्मनी की अनास्तासिया ब्लेवास को 10-7 से हराया। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रियांशी प्रजापत कांस्य पदक जीतने से बस एक जीत दूर रह गई। पुरुषों के 125 किलोग्राम वर्ग में रजत रोहल ने कांस्य पदक जीता। उन्हें यह पदक तब मिला जब उनके प्रतिद्वंदी अमेरिका के मेसन पेरिस ने चोट के कारण भारतीय रेसलर को वॉकओवर दे दिया। रजत क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के कामिल कोसियोलेक से हार गए थे, लेकिन रेपेशाज राउंड में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ग्वानुक किम को 8-4 से हराकर पदक मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारत के पदकों की संख्या अब 5 हो गई है। गुरुवार को मिले 2 पदकों के अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ने बुधवार को पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक ने 61 और विशाल कालिरमाना ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल कल महिलाओं के 53 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबला करेंगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैंप।
1: भारतीय पहलवानों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सबकी निगाहें नेहा, मानसी, सविता और अंतिम पंघाल पर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी आयोजित की जाएंगी।
2: साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली, आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे।
1: अब सीधे चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की ओर, जहां भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 79-46 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल थाईलैंड के बैंकॉक में खेला जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में थाईलैंड और ओमान को हराकर दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अपने ओपनिंग मुकाबले में थाईलैंड को 106-62 से और दूसरे मैच में ओमान को 99-17 से हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कार्डिफ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को नाबाद 99 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सधी हुई शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। गिल 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया। 111 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में 3रा विकेट गिरा। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ 4थे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचाया। लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। कोहली ने 66 गेंद में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर 71 गेंद में 7 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए। भारतीय पारी 44 ओवर में केवल 233 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए।

0: 234 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत निराशाजनक रही। बेन डकेट पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद जैकब बेथेल भी जल्दी ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट ने मोर्चा संभाला, रूट ने विल जैक्स के साथ छठे विकेट के लिए 72 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। रूट ने गस एटकिंसन के साथ सातवें विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 45वें ओवर में आसान जीत दिलाई। मैच के बाद जो रूट ने कहा कि हम लगातार एक दिवसीय प्रारूप में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: You could look at the last 30 games and look at our record, or you could look at the here and now, and I think this team should be judged on the here and now. We won in Sri Lanka, you know, the first team to win there for 4 years, and similarly to that series, we lost the first game, learned lessons and evolved and got better and adapted, and that's exactly what we did again today. The challenge is, can we do it at Lords when the pressure's on against another, again, a brilliant team, a number one ranked team in the world? For us to stand up and play like that, I think shows where we are and is a good benchmark for us. So, you know, let's back it up again at Lords, and then I think there's a very different look to or perception to where this team is.
0: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मध्य क्रम में लगातार विकेट गिरना हार का कारण बना।
2: Quite disappointing, to be honest. You know, we thought 300-310 would be a good total after 25 overs. We were at a good position, but you know, we lost too many wickets in the middle overs. We know our tail enders are you know, not the best batsmen, but I think we expected a bit more from our lower mid order, and we were not able to capitalize on the start that we got. But hopefully, you know, the next time we get there, we'll try to build some small partnerships and take it on from there.
0: श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: बुलावायो में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। तीन मैचों के श्रृंखला 1-1 से बराबर है। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 32 रन से हराया था। उधर मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश ने सारंग ने कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की रहने वाली क्रांति गौड़ ने टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की 270 रन की शानदार जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
5: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
4: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
5: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
4: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
5: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट से जुड़िए, स्पोर्ट की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
6: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
4: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
5: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
4: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को

0: समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों,

0: खास प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees.

0: जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूँ

0: ज्यादा आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जिंद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। महान क्रिकेट ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का आज 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The India government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन। और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को हरियाणा के भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक

0: कदम उठाते जाएंगे।
1: भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा है कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। 3 देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। 4 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। ईरान की समाचार एजेंसी ने IRGC के हवाले से कहा है कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के तहत किए गए। समाचार एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी सेना ने सीरिया के अल तनफ क्षेत्र में स्थित अमरीकी विशेष अभियान कमान केंद्र पर अचानक हमला किया। एक रिपोर्ट।
3: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि हमलों के पहले चरण में कुवैत में अमरीकी सेना के अड्डे पर स्थित एक अमरीका के मिसाइल रक्षा निगरानी रडार, कई हथियार डिपो, 2 हिमर्स रॉकेट लॉन्चर और कई मिसाइलों को निशाना बनाया गया। IRGC ने सलमाह पठार पर स्थित एक नौसैनिक निगरानी रडार और ओमान के घनम क्षेत्र में स्थित एक अमरीकी हवाई निगरानी रडार पर हमला कर उसे नष्ट करने का दावा किया। इस बीच कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रही है। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एंडी बर्नहम को आज ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC के अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में आयोजित विशेष पार्टी सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि एंडी बर्नहम को 379 नामांकन प्राप्त हुए जो नया नेता चुनने के लिए पर्याप्त संख्या थी। निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा औपचारिक रूप से सम्राट को अपना इस्तीफा सौंपा गया। इसके बाद बर्नहम को सोमवार को राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उसने चेतावनी दी है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस के अंतर्गत व्यापार लाभों तक पाकिस्तान की निरंतर पहुंच 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आज हर श्रृंगार लेकर श्रोताओं स्टूडियो से साथ हूं मैं आपकी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है और साथ ही सदाबहार गीतों मेरा चाबसा प्यार का वो प्यारा एहसास जो सदियों से हमारे दिलों को महकाता रहा है, कुछ ऐसे ही सदाबहार गीतों से सजा है आज का हर श्रृंगार। आज साथ रहेंगे कुछ ऐसे ही सदाबहार गीत भी। वो कहते हैं ना, प्रेम का अर्थ ही है निखरना, बिखरना नहीं। हमेशा उस जुड़ाव को चुने दोस्त जो आपकी आत्मा को सुकून दे और आपको खुद से प्यार करना सिखाए। एफएम गोल्ड कुछ जुड़ाव ऐसा ही अंदाज लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के हर श्रृंगार का आगाज इस गीत के साथ जो की है गुमनाम फिल्म से और इस गीत को आवाज दी है रफी साहब और श्रद्धा जी ने। आपको बता दें इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए आगाज करते हैं आज के हर श्रृंगार का इस प्यारे अंदाज के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और वो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ ऐसे साथ भी मिलते हैं जो आपकी नाराजगी के बाद भी आपसे जुड़े रहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी शख्सियतें जो आपके इनकार पर भी आपके पास ठहर जाया करती हैं, आपकी नाराजगी पर आपके मान जाने का इंतजार करती हैं। उस शख्स से कभी खुद को दूर मत कीजिएगा। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त। जी हाँ, अगला गीत आप तक पहुंच रहा है जो कि वारिस फिल्म से है, लता जी और रफी जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज से सजाया है राजेंद्र।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और दोस्तों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जीवन में कभी कभी ईश्वर के दिए रिश्तों से गहरे वो रिश्ते हो जाते हैं जो बिना नाम के होते हैं, जहां आपके लव्स कम और एहसास ज्यादा होते हैं। बड़े होते हैं ऐसे रिश्ते, बचा के रखिएगा ऐसे रिश्तों को। जी हाँ, ये सुनते हैं शर्मिली फिल्म का ये अगला गीत, जो कि जिससे आवाज दी है किशोर जी ने और अल्फाज दिए हैं नीरज श्रीधर जी ने। इस गीत को संगीत से सजाया है एसडी पामन जी ने। तो आइए सुनते हैं कुछ गुलों की ये दास्तां।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल दोस्तों आप सुन रहे हैं और हर सिंगार का ये प्यारा अंदाज। कहते हैं कि गीत संगीत का कोई भी अंदाज आप सुने ना दिलों को महका जाता है। कुछ यही अंदाज 90 के दशक से हमने आपको सुनवाया। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल ही दिल में फिल्म से ये गीत था अभिजीत साहब की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए महबूब साहब ने और संगीत बद किया AR रहमान जी ने। जी हाँ दोस्तों, हर सिंगार का ये प्यारा अंदाज तो आप सुन ही रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बड़ा प्यारा एहसास है कि किसी के उजले हिस्से को देखकर साथ आना तो महज एक कशिश है। बात तो तब है जब किसी के अंधेरों को जानकर भी उसके साथ आप रोशन होने का हौसला रखते हो। इन प्यारे एहसासों के साथ फिलहाल आज के हर सिंगार को यहीं समेटने की आपसे लेती हूँ इजाजत। इस गुजारिश के साथ कि सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, ये प्यारा अंदाज आप सुनते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 11:10 पर मार्केट मंत्रा सुनना ना भूले और अपनी पसंद के गीतों को मैं लेकर आऊंगी 11:40 पर गीत मेरे मन मीत के अंदर। जी हाँ, तो इंतजार कीजिए हमारे प्रोग्राम्स का, हमारे समाचारों से सजे इस अंदाज का। तो फिलहाल आपको सुनवाती हूँ एक ऐसा ही प्यारा सा गीत जिसके साथ आपको छोड़े जाऊंगी। जी हाँ, इस गीत को अल्फाज दिए हैं, आवाज दी है रफी साहब ने। और जी हाँ, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से ये गीत आप तक पहुंच रहा है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सुहानी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259

8 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर बढ़ते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100

0: Index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया. वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा में 0.9%, कैंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid-small private quality tilt index and BankEx rose by 1.6% and realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods dipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर ₹96.28 पर बंद हुआ. एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर आर्थिक संकेतक भी इसके पीछे रहे हैं जो इस तेजी को आगे ले जा रहे हैं?
2: देखिए, आज का जो बाजार की जो मजबूती है उसके पीछे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टसल है, वो अभी भी जारी है, बल्कि और डीपन हो रही है. यूएस और ईरान में जो वॉर है वो और इंटेंसिफाई हुई है. तो आज का जो बाजार, जो हमने कुछ दिनों से देखा कि बाजार एक मजबूती के दौर में आया हुआ है, उसके पीछे हमारा जो घरेलू एक सपोर्ट है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है. और तीसरा हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, वहां पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया. लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है. उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है. युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है. हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है.
0: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट Nifty Bank went up by 1%, and you mentioned about corporate results. The first quarter results are now out, and we can see about 4 banks have declared positive results as well. What has been the reason behind banking performance at the fundamental level for our economy?
2: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly. Because with the support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year. Because we are moving ahead. We are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. अदरवाइज मेनी मेनी कंट्रीज आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक द बैंकिंग स्ट्रेस बट इन इंडिया आवर बैंकिंग सिस्टम रिमेन्स वेरी वेरी स्ट्रांग एट एवरी क्राइसिस whether the coronavirus or the before that lemon crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
0: So there's no liquidity issue basically as far as
2: banking. I don't see any liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
0: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
2: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they will not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results and that is in front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
1: SP, अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें वापस मार्केट की हम बात करते हैं तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है तो जिसमें FIS और DIS की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि हाँ दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर ये कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं.
2: देखिए इसमें ऐसा है पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है जो FII और DIA का इंडिया में जो रुख है वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है खास करके FII काफ़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है देन दे पुल देयर मनी एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट देन दे पुट असिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट. तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है. एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट.
1: बैलेंसिंग
2: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स. दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स. अभी तो हमारे ऊपर FII का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है. जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन्स हैं वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे है. और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है.
1: ओके
2: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूँ. लेकिन ओवरऑल जैसे FII और DIS का मैंने बताया इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है. जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखेंगे दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म कैप मीडियम टू लॉन्ग हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. दे आर समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप्स एंड समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द स्मॉल एंड मिड कैप्स.
0: स्पीकिंग ऑफ ब्लू चिप्स एंड selective stocks, you've seen that index heavyweights, as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights, a company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9-12% on the Sensex, went up by 2%, and as a result we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
2: Prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive, and we have great possibilities to expand the businesses in this segment, and that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10

0: to 12-15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
1: और आगे बढ़ते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया। वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे। एसपी, अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमीकंडक्टर शेयरों का यहां पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है?
0: देखिए, जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में, और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे, डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है। अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं। जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफी संभावनाएं जो है वो धुंधली नजर आ रही है। उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है। जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है, इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही है। जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगी, कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे। तो उनका एक सस्टेंड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है।
1: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है। तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही, भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं। पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं। और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है। एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इंपैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन द हाई डबल डिजिट, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज लेस देन 4%, इंडिया इज 6.5-6.6%, आप अंतर देखिए कितना है। तो चाइना का स्टोरी काफी डिमिनिश हो रहा है और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इंपैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं।
2: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
1: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है, और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर हैं कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है।
0: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है और अभी ये हमने न्यूज देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफी वीक से इनमें बढ़ोतरी है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों तीनों चीजें मिलके कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है.
1: राइट,
2: मूविंग ऑन टू मोर न्यूज. द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विल रिलीज द रिवाइज सीरीज ऑफ द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI with a base year of 2022-23 on the 20th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the revised series will replace the existing ICI series with a base year of 2011-12. The ministry said that iron ore has been included as a core industry in the revised ICI series, citing its extensive use in industrial production and its significant contribution to industrial development. With this addition, the number of core industries has increased from 8 to 9. Now, how do you see the inclusion of iron ore really redefining how we look at core industry data and, for that matter, factory output?
0: Yes, Arjun, these are very strong developments. We also revised our base year for the GDP, for the inflation, WPI, CPI. And recently, government has started a new thing for the services index. That will indicate the growth story of the services, because we are services dominating economy. So now this ICI is also very important, because core infra is also backbone of our industrial development. But the base was very old, actually 11-12. Now the recent base 22-23 will make a great sense and provide the real picture of our core sector development.
2: In more news, Gujarat has emerged as a top performer among Indian states and union territories in the Investment Friendliness Index 2026. It is followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Goa and Odisha as the top performers. Niti Aayog today released the Investment Friendliness Index 2026 in New Delhi, outlining the states that are best placed to attract investment as India pushes toward the goal of Viksit Bharat by 2047. Niti Aayog said that Gujarat's strong port operations and power sector, Maharashtra's ability to attract private equity and venture capital, and Tamil Nadu's infrastructure and export performance have contributed to their high rankings. CEO of Niti Aayog, Nidhi Chibbar, said that the index is not intended to be merely a ranking exercise. Rather, it is designed as a practical reform tool. She said that the index enables states to benchmark their performance, identify priority areas for improvement, and learn from one another's best practices. So tell us about this friendliness index, and once again, Gujarat as a top performer.
0: Yes, Arjun, because Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, these are industrial states actually, and performing very well, not only the manufacturing, but in the exports also. Gujarat, Maharashtra, they have a great share of in our overall exports.
2: Also, land bank is
0: there. Land banks is there. So that's why these states are performing well for the investment attraction and becoming more and more robust. And also, along with ease of doing business, they are also the best performers in these offering business trajectory as compared with many other states.
2: In more news, the Employees Provident Fund Organization, EPFO, has launched the Vishwas 2026 to facilitate amicable settlement of disputes relating to levy of damages and penalty-related disputes. The Labour and Employment Ministry said that the scheme is a one-time dispute resolution and provides employers with an opportunity to settle eligible cases through a transparent, fully digital and time-bound process. It will remain operational for a period of 6 months from the date of notification. The Ministry said that it has been introduced with the objective of promoting voluntary compliance, reducing litigation and enabling speedy resolution of long-pending disputes relating to penalty and damages while safeguarding the interests of employees. Now let's move on to the crude oil market. Global crude oil prices climbed today as escalating attacks between the US and Iran heightened tensions across the Gulf. Brent crude was trading 2.1% up at $86.02 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% higher at $81.02 per barrel when reports last came in. How concerned, Dr. Sharma, are you with these developments? A 60-day ceasefire, which really led to a great deal of investor sentiment all across the globe, is now being damage in a significant way, because not only oil and gas prices are likely to go up, but really business costs are likely to be

0: go up as well, and travel and tourism is going to be hit in a big way.
1: Yes, Arjun, this is I think very unfortunate for the global economy that peace was in process and then suddenly they are again intensifying the war in West Asia, which is impacting the crude significantly. Now 85-86 is not a favorable number, because we were anticipating that crude will now fall to 70, somewhere between 70 to 75 and stable there. But now again this will be a great challenge for the global inflation trajectory, and not only the inflation numbers but also impact the many segments of the economy, because economic activity is greatly supported by the energy, like the crude oil prices.
0: Agriculture also, because
1: yes, agriculture inputs are also increase and impact the production cost of the farmers.
2: तो इसमें एसपी ये भी तो है कि वैश्विक मांग और आपूर्ति को लेकर के संतुलन बनाना आजकल पूरे विश्व के लिए बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे उन देशों के लिए तो भी ज्यादा ये मुश्किल हो रहा है जो तेल का निर्यात करते हैं.
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा पीस प्रोसेस हो, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ट्रंप साहब से आए कि जिससे वो फिर बातचीत करने की बात में ईरान को बोले और दोनों एक टेबल पर आए और कुछ फाइनल हो. बट इस जंक्चर पे जो सिचुएशन है दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,41,170 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,15,740 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.2% upar aakar 1,46,576 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.4% niche aakar 2,15,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीजों, खासतौर पे अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके हम इसमें चल सकते हैं मार्केट के बजाय.
1: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक स्टेबल कॉमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा, अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज्यादा हर रोज अनाउंसमेंट्स हैं. आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीजों में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स.
2: इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी शुक्रिया, थैंक यू.
0: And now closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय ले.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

रफी जी ने इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत एस टी बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं, आगाज करते हैं गीत मेरे मनमीत का इस गीत के साथ।

0: फरमाना।
1: ये तो पलकों से पीछे की बात थी, लेकिन जनाब अगर आपके ख्यालातों की बात हो तो ये गीत बड़े खूबसूरत अंदाज में इन बातों को बयां करते हैं। अगला गीत आए मिलन की बेला फिल्म से आप सुनेंगे लता जी की आवाज़।

जी हाँ, इतने प्यारे गीत सुनकर बुरा तो शायद कोई नहीं मना सकता। 100.1 मेगा हर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत दोस्तों आप सुन रहे हैं और ये अगला गीत आपकी नजर करते हैं। जी हाँ, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, आवाज दी है रफी साहब और लता जी ने, और दोस्तों संगीत से इस गीत को सजाया है एस डी बामन जी ने।

दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ईश्वर का तो शायद यही सोचना है कि कुछ नहीं अच्छा तो दुनिया में बुरा भी कुछ नहीं, कीजिए सब कुछ मगर अपनी जरूरत देखकर। जी हाँ, बिल्कुल। और जरूरतें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं दोस्तों। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यू बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। 100.1 MHz पर गीतों का ये प्यारा अंदाज, सुरीला अंदाज आप सुन रहे हैं मेरे यानी रोहिणी के साथ। और ये अगला गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से, आइए सुनते हैं।

कहते हैं ना कि आओ कि अब ये दिल चैन तो पा जाए, भटका राही कोई मंजिल को पा जाए। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। लेकिन श्रोताओं, ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये मुझे बार बार कह रही है कि आज गीत मेरे मन मीत को मुझे यहीं समेटना होगा। तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े जाती हूँ एक और बेहद सुरीले तराने के साथ। जी हाँ, अंजना फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे जिसे मखमली आवाज से सजाया है रफी जी और सुमन कल्याणपुर ने। और इस गीत को आवाज तो इन्होंने दी, लेकिन अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने, और संगीत का आनंद आप लेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के अंदाज में। तो आइए सुनते हैं, और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए कुछ इसी अंदाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भवह की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र

0: 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना का पहला चरण 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress."

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूँ आपका मनपसंद निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो ना, न जाने क्या हुआ है मुझे तुमसे मिलने के बाद। हर दुआ में शामिल हो तुम, मेरी जिंदगी में आने के बाद बेकरार सा रहता था दिल मेरा हमेशा, पर अब सुकून मिलता है मुझे तुम्हारी बाहों में आने के बाद।

हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हवा के हर झोंके में तुम्हारा ही साया लगता है। अब तो लौट आओ की सांसें भी पूछती हैं कि तुमने किसे इस कदर दिल में बसाया है।

तुमसे मिलने से पहले तक सिर्फ जीते रहे थे हम, तुमसे मिलने से पहले तक तो सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे क्या मिले कि जिंदगी से ही मोहब्बत सी हो गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ कार्यक्रम निशिकांत।

तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना ये सारा जमाना बेगाना सा लगता है।

तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है, तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है। ये देख कि वो अपनी रूह को भी तेरी चाहत में उतार बैठा है।

0: तेरी चाहत में खुद को भुला दिया, मैंने अपने हर पल तुझ पर लुटा दिया। मेरा दामन तो है तेरे कदमों की छाँव में, अब कोई फर्क नहीं धूप और छाँव में।
1: पथ पे चला, उस पथ पे

जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जब से तेरे साथ की कसम ले ली। अब तो मेरी किस्मत तेरे ही हाथों में है, मैंने अपनी खुशियां तेरे कदमों में जो रख दी।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपसे 1:10 पर फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉ. मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुवर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 23 सेकेंड और अब समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

तू मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तू मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तेरे संग ही जीना है मुझे, अब यही आखिरी चाहत है मेरी।

अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, मुझे तेरी हर बात पर इकरार है, क्योंकि तू ही मेरी तकदीर।

तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में, तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में कि अब तेरे बगैर कहाँ जाएंगे हम, तू ही तो रहता है हर वक्त मेरी बातों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, इस धड़कन में बस तुम्हारा ही तुराज है।

जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ, कदम तो बस मेरी तरफ ही आते हैं।

आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं, आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं कि देखो मेरा महबूब आता है इन वादियों में, तो ये बहारें भी मुस्कुराती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के बाद कार्यक्रम रात सुरमई लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया। ईडी ने बताया कि यह जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि ये भूस्खलन सुबह चोंगजिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचावकर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

नजरों में कुछ तो बात है, तेरी नजरों में कुछ तो बात है जो हर बार हमें वहीं रोक लेती है।

जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास भी नहीं आती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है, ये रात भी हमने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। तुम पास हो तो धड़कनें भी गुनगुनाती हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद खुदा ने ये खुशियां बरसाई हैं।

दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, और तुम पूछते हो कि तुम्हें पता है कि मोहब्बत क्या है।

दोस्तों अब समय हुआ है समाचारों का। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छलिया बापू के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अभी आपने गीत सुना छैला बाबू से। दूरियां चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार हमेशा दिलों को करीब रखता है, और जब प्यार दिलों में बस जाए तो उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं लगता।

सच्चे प्यार में इंतजार भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है और इंतजार की हर घड़ी प्रेम की गहराई को और बढ़ा देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है हम राही। प्यार की मधुर मुस्कान, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले पता ही नहीं चलता। प्रेम की मासूम अदाएं, प्रेम की मासूम अदाएं कब दिल जीत ले पता ही नहीं चलता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार के बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं। प्यार में बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि मन कब सुकून और उजालों से भर जाता है।

तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, यादों की खुशबू हर पल साथ रहती है और मोहब्बत हर धड़कन में जिंदा रहती है।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। छोड़े जा रही हूँ आपको हमराही कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र

0: पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने आज एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a 4-lane greenfield, Delhi Amritsar Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen power train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Prime Minister

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की लम्हे फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है हरिहरन ने।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से, इस गीत के संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म आनंद से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।

और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सागर से एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आरटी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती, बासु और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरटी बर्मन।

0: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इश्क पर जोर नहीं से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस टी बर्मन।
1: मेरे बैरागी भवरा

अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से साधना सरगम नितिन मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, जल्दी मुलाकात होगी, यानी 5:10 पर। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जो आखिरी गीत इस कार्यक्रम का, वो है फिल्म हरियाली और रास्ता से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। छोड़े जा रहे हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। यह अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाज में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक

वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 24 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और गिलेन ई सूजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged off the passenger service from Jind railway station in Haryana. The train will run between the Jind and Sonipat railway.

समय हो गया है प्रोग्राम भूर सुहानी का। आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ।

जीवन में शांति हमें सिखाती है कि जब मन में भक्ति और विश्वास हो तो जीवन का हर वनपथ भी सुंदर बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जैसे सुबह की ठंडी पुरवैया मन को ताजगी देती है, वैसे ही अच्छी विचार, अच्छे सोच जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी।